नहीं है। जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा, होगा निश्चित रूप से होगा भाई। ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार, जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूं अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए, दूरम उपाय है, जो आपके अनुकूल ना हो बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए। वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौन रहकर उससे दूरी बना लेना ये बुद्धिमानी है। मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे, जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय न मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि न की जाए। सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के सबका

अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा, हो ही जाता है भाई। यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती। यही तो माया है, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, पर आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे। यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है? यही तो है, संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती। यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। परदोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते। आप में दोष दृष्टि ना हो, सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाणे। अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। अब आज तो संसार में ही रमे हैं हम, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, ये संसार इसीलिए रचा है। सीखिए समझिए, चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था। जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं? ऐसी जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई,
एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर्मन को दूषित कर बैठता है। वो आवश्यकता से अधिक चाहता है, और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात जुगल बिहार की करे बिचारे तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाति को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं, और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रविदास जी कहने उनका संग करे, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करे, वार्ता करे, चिंतन करे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाति को परस सुना करे। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, न अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब भीग। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं, तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की। चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही। वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है, उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये लेने, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों,
बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है आप पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। टाका बाका कहने लगे प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे, बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहाँ ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करे तहां आचार करे, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करे तो शुद्धता का ध्यान रखे, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है, और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने। जो भोग श्रीजू को लागो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन श्री।

पावन। कह रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एकादश स्कंध में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करे। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते, रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते, श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है, भोर भये ते सांझ धरे तक सेवा कोही ने हमारा। प्रिया जी की जो टहल है जो सेवा है ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। श्री जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर होए जाई, यही मैं आपसे कह रहा था, बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा वो ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे।

घटना में वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विदित तो है अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का।

0: फल हो।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता है, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है वस्तुतः सम्मानित वही है, समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। ध्रुवराज जी कह रहे हैं उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे। पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो। अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करता है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो, नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। देवदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया। वो जल गया कहां? सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? मैंने वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो दुर्दास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल वालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया, तो कह रहे ब्रह्मा

अधिक सनकादिक या बात में भूले हैं औरन की कौन चलावे, जो यह बात मन में न आवे कहने तिन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई, यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना, यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीरथ है। श्री गुसाई कृष्णदास जी को पद, साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाज। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी की चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाध। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार अनेक, तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं, घटको नाही। दुर्दास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: आज ना शुरुआत ही करते हैं मेरे माइंड के एक बहुत बड़े कंफ्यूजन से, और उस कंफ्यूजन को कंक्लूजन तक लेके जाने की मेरी आज कोशिश रही। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ, और इसका कंक्लूजन आज सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ही मुझे दे सकते हैं, जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है। सिस्टर, मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि जब उन्हें पानी ऑफर करते हैं ना, तो वो थोड़ी देर पानी अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद कुछ चैंट करके फिर उसे थोड़ी देर बाद पीते हैं। तो एक बार मैंने रैंडम किसी से पूछा था, तो उसने मुझे ये बोला कि हम पानी के एनर्जीज को चार्ज कर रहे हैं, बट मैं ब्लैंक हूं तब से लेके अभी तक, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, ये वाटर चार्ज या फूड चार्ज क्या होता है।
1: अगर मैं कहूं कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं, अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारी में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं, उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला, जो जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं, जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल, आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है। और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे, यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहां भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहां आप विशेष वहां रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूं, तो वहां रेड कलर की रेज डालें, कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहां पॉइंट है वो पेन का, वहां विशेष फोकस करें और वहां के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: ये काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है कि हम जो हमारे सराउंडिंग की चीजें हैं उन्हें भी एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बस ऐसा बना सकते हैं कि जब वो बॉडी के अंदर हमारे जाएं तो वो बॉडी को बेनिफिट दें। और ऐसी बहुत सारी प्रो टिप्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो मिस बिल्कुल भी ना करिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।
2: हो गया।

0: जेल में खाना तो अच्छा होगा।
1: खाना छड़ पीने की सोच, बियर शर सब बंद पैन।
2: करण तुम लोग फेमस हो गए यार, पूरी कंट्री से फोन आ रहे हैं, पूरी कंट्री से। अरे चलो जवाब दो यार, तुम्हारी लगाई हुई आग अब फैल रही है यार। पुलिस पुलिस, दिस इज अनरियल मैन, ये कैसे हो गया यार, वो कहां से आ गए? अरे यार मेरी करियर खराब हो जाएगा यार।

0: ये सारी बातें सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है मेरा नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है। क्या आज से पहले आपको भी ये बात पता थी कि हमारे फोन की तरह हम अपनी बॉडी को भी चार्ज करते हैं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। तो सिस्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वैसे हम अपनी बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअल वे में, तो वो क्या है, हम कैसे उसे चार्ज कर सकते हैं?
1: अगर मैं कहूँ कि बहुत पहले भी ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है, जो हम योगास देखते हैं अष्टांग योग, वो एक स्लीपिंग स्टेज का एक ऐसा योग है जिसमें वो अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में भी अपनी बॉडी को चार्ज हम करते हैं। हम जब लेटते हैं या बैठते हैं या खा भी रहे हैं उस दौरान भी आप अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने और भी चीज़ें, कलर थेरेपी, रेकी, ये सब चीज़ें भी बनाई हैं कि आप रेज लेते हैं। तो हम इनका सबमिशन लेते हैं एक्चुअली, कि हम उस परमात्मा से जो यूनिवर्स से भी ऊपर है और यूनिवर्स को चलाने वाला जो, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी से भी ऊपर जो कहें सुप्रीम है, उनसे हम रेज लेते हैं, जो परम सत्ता है, परमात्मा शिव जिनको बोला जाता है, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जो क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में हर जगह पूजे जाते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। तो उस लाइट से, जैसे सूर्य से फॉर एग्जांपल, आप लेजी कर देते हो कि जैसे सूर्य के सामने आप बैठे हैं और उनसे रेज आप ले रहे हैं, तो इसी प्रकार की आपको रेज लेनी है और उसके साथ साथ पैरेलल में आपको थॉट्स क्रिएट करने हैं। एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हुआ कि रेज आ रहे हैं, साथ में आपके वर्ड्स भी रहेंगे यानी अफर्मेशंस कि मुझे बहुत पावरफुल रेज आ रहे हैं। अब आपको अपनी बॉडी में कहाँ भी कोई, अगर जैसे एक तो है चार्ज, एक है हीलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे आपके दाएं या बाएं हाथ में दर्द है, तो वहाँ आप विशेष वहाँ रेज डालें। और अगर मैं सेल्स एंड बोन्स के लिए कहूँ तो वहाँ रेड कलर की रेज डालें कि परमात्मा, रेड कलर सिग्निफाई करता है एनर्जी का, पावर का। तो परमात्मा मेरे सारे जो सेल्स हैं उसको हील भी कर रहे हैं और चार्ज भी कर रहे हैं, और मेरा जहाँ पॉइंट है वो पेन का, वहाँ विशेष फोकस करें और वहाँ के सेल्स को कमांड करें, इट्स यू ओनली डूइंग दिस। भगवान तो हेल्प कर ही रहा है, वो तो है ही है, लेकिन आप ही हैं मास्टर ऑफ द माइंड, कि आप उससे बात कर रहे हैं और सेल्स को कमांड कर रहे हैं कि आपकी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्कुल हील होते चले जाए। तो ये चीज वाकई में काम करती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है।
0: मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना सुबह के 10 मिनट 15 मिनट अगर हम अपनी बॉडी को दे देते हैं तो शायद हमारे जो पूरे दिन का रूटीन है, जो हमें आलस आता है, जो हमें नींद आती है, जो हमें मन नहीं लगता है चीजों में, वो सब नॉर्मलाइज हो सकता है। और ये चीजें हम लोग को कभी पता ही नहीं चलती थी, इसलिए शायद हम कर नहीं पा रहे हैं। और वो जो बोलते हैं ना दुनिया में 1% लोग हैं जो बहुत सक्सीड कर रहे हैं, और शायद वो लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हो इसी

0: Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

0: देखो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये सुनने के बाद कोई भी मुझ पे हंसेगा नहीं। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया। अब जो अगला मेरे मन में सवाल आया है, जो क्यूरियोसिटी आई है, वो ये आई है कि फूड जो होता है वो सिर्फ न्यूट्रिशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से भी बनता है। जो फूड बनाने वाला इंसान है या व्यक्ति है, जब वो खाना बना रहा होता है तो वो जिस इमोशंस को रख के अपने दिल में वो फूड बना रहा होता है वो भी उसमें जाते हैं। कोई नफरत के साथ बना रहा होता है तो वो नफरत जो है वो उस फूड में आती है और वो हमारी बॉडी को उसी तरह जाके लगती है या हमारी बॉडी उसके बाद उसी तरह रिएक्ट करती है। ये क्या पूरा प्रोसेस है
1: कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एग्जांपल हुआ कि एक बार पहले के लोग जो है वो भोजन भिक्षा के रूप में मांगते थे। तो एक बार गुरु के शिष्य भिक्षा मांगने गए, तो जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और गालियाँ दे रही थी, लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दान वृत्ति की थी। उसे गुस्से में ला करके उनके पात्र में भोजन दे दिया। जब दे दिया तो वो आए घर लेकर के, भिक्षुक जो शिष्य थे उन्होंने भोजन जो है वो अपने गुरुजी को सर्व कर दिया। जैसे उन्होंने भोजन किया, गुरुजी को गुस्सा आ गया, वो बहुत तेज तेज गालियाँ देने लगे, गुस्सा करने लगे। उसको बड़ा फील हुआ, ये क्या बात, हम तो घूम के लेके आए, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। नेक्स्ट डे फिर वो शिष्य गया और उसी रास्ते पर फिर वो चला गया जिस जगह वो अगले दिन गया, पिछले दिन गया था। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जा कर के उसी लेडी ने सॉरी फील किया, कहा कि आप सच में, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कल आपको मैंने गुस्से में भोजन दे दिया, कल मेरी बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था, तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करके फिर उन्होंने भिक्षा दी तो वहाँ से लेकर आए। सेम प्रोसेस यहाँ गुरुजी ने जब भोजन लिया तो उनका भी सेम प्रोसेस था, वो भी सॉरी फील करने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कल मैंने को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो शिष्यों को समझ नहीं आया, उस शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या हुआ, कल आपने इतना गुस्सा किया, आज आप, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था, आप सॉरी फील कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम ये भोजन कहाँ से लाए थे। तो उन्होंने बताया कि जैसा आपने किया ऐसे वो जो लेडी थी उसने भी ऐसे ही किया, कल वो बहुत गुस्से में थी और कहा इसी का प्रभाव मेरे ऊपर है, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लिसनर्स में सभी अगर भोजन बनाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाए कि हम भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और जो भी घर का सदस्य खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा।
0: इट मीन्स जब हम खाना बनाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं बनाते समय वो ट्रांसफर होती हैं। और जो आपने परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि वो गुरुजी के पास जाता था तो उनको भी खा के वो आ गया, टू गुड टू एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच, इतने अच्छी तरह से ये चीज हमें एक्सप्लेन करने के लिए जो हमको आगे तक याद रहे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

0: तभी याद है तुम कहा करते थे कि सफर शुरू होने से पहले तुम सफर के मालिक होते हो, मगर जब सफर शुरू होता है तो सफर ही मालिक हो जाता है।
1: वक्त हो गया है यहाँ पर आपको एक और प्रो टिप देने का। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी को अपने पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी या पीसफुल चीजों के साथ शुरू करना हो तो उसे अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐसी क्या चीजें ऐड कर लेनी चाहिए जिससे उसकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली चार्ज रहे और वो काफी मोटिवेटेड रहे।
2: मेरे किसी एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छे, जैसे चार्जिंग तो हम करते ही हैं। उन्होंने एक बात रखी थी, मैं आज यहाँ सामने आपके रखना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं उठता हूँ और सबसे पहले जब धरती पर पैर रखता हूँ तो मैं हाथ झुकाकर धरती को सर पे मीन्स जैसे नमस्कार करता हूँ, उनका थैंक्स करता हूँ कि आज मैं पैर जो है आपके ऊपर रख रहा हूँ और पूरे दिन आप मुझे सपोर्ट करें। तो इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ें थैंकिंग जो एटीट्यूड अपना बना लें कि हर चीज़ का थैंक्स करना शुरू करें। हमने ये तो सीखा बचपन में कि अगर कॉपी को पैर लग जाता है तो हम टच करते हैं, बैग को लग गया तो टच करते हैं। बहुत गुड हैबिट है, ये बहुत अच्छी हैबिट है, ये कोई बेकार मैं नहीं, कई लोग इसको भी गलत मानते हैं, बट आई फील कि आप कहीं तो उसके प्रति झुकने की एक भावना तो आई, भले अंदर से शायद हम एम्प्टी होकर के झुक रहे क्योंकि आदत पड़ गई है, लेकिन इस आदत की वजह से ही सामने वाले के अंदर एक भाव जाग गया कि ये स्पिरिचुअल है। तो हम कुछ ऐसा थैंकिंग बिहेवियर करें। मैंने एक व्यक्ति से और भी सुना था कि वो अपने लैपटॉप को थैंक्स करते हैं, तो क्या आपने कभी अपने लैपटॉप को थैंक यू किया है?
1: नहीं।
2: कभी हमने अपने सिस्टम जो हम गैजेट्स यूज करते हैं कभी मोबाइल को थैंक यू किया है? हमने कभी नहीं किया है। तो अगर हम अपने नेचर में एक थैंकिंग बिहेवियर ले आए कि सुबह उस परमात्मा का थैंक्स करें कि आज क्या आपने दिन देखने का मुझे मौका दिया, अपनी बॉडी को थैंक्स करें कि आज आप बहुत अच्छे से वर्क कीजिए बिकॉज मुझे आज बहुत आपका यूज करना है, अपने लिवर का, अपने स्टमक का आप थैंक्स करें। कई ऐसा कहेंगे हंसने वाली बात है, लेकिन अगर आप सच में जानेंगे, अगर आप इसे डेली रूटीन में ले आएंगे, आपका स्टमक फंक्शनिंग, आपका लिवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, ये पहले से भले 1% ही सही लेकिन वो सुधरने लगेगा क्योंकि ये साइंटिफिकली सेल्स वाइज थॉट वाइज आपका अंदर तक जा रहा है। और सबसे पहला डॉक्टर जो मैं कहती हूँ कि आप खुद हैं अपनी बॉडी के, दूसरा डॉक्टर बाद में मिलने वाला है, वो देर में मिलने वाला है, वो इनडायरेक्टली काम करेगा, मैं सबसे पहले काम करूंगा।
1: कई बार जब मैं आपको सुनता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर में ऐसे बैठूं और उन चीजों को फॉलो करूं तो शायद एक नया नजरिया जो लाइफ को देखने का होता है ना वो हम सबके सामने आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया इतनी मोटिवेशनल चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।
3: यह निकाला ना तूने देसी मुर्गा, अब उन इंटरनेशनल फाइटर्स के सामने ऐसा देसी फाइटर डालूंगा कि सालों की सांस बैक साइड से निकलेगी।
4: थैंक यू।
5: यस इट्स कंफर्म, हमारी सरकार ने राइट टू फाइट को इंडिया लाने का फैसला कर लिया है। R2F का पहला टूर्नामेंट मुंबई सिटी में होगा।
6: सर R2F दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में बैन स्पोर्ट है।
5: USA, UK, जर्मनी और कई यूरोपियन कंट्रीज में R2F एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। तो यार स्पोर्ट को स्पोर्ट ही रहने दो, कुछ और नाम ना दो।
7: Hey David, आजा जा, ऊपर आ।

0: टूर्नामेंट किसी भी क्रिकेट लीग से ज्यादा पैसा कमा के देख। इट्स अ मनी स्पिनर, ये मेरा चैलेंज है।
1: मिस्टर ब्रिगेंजा, इंडिया में आपको उस लेवल के फाइटर्स मिलेंगे?
0: नहीं, उसके भी ऊपर के लेवल के मिलेंगे।
2: A country with billion people and le deke what 10 world class sportsmen? And now by sanctioning RTF, you mean to say ye jo sadkon pe ladte hain wo seedha international fighters se ladenge?
3: Sadkon pe gali cricket khelne wale national cricket team mein nahi dekhe aapne?
4: Indian sports ka har champion shayad sadak se uthkar aaya ma'am.
5: Ex fighter Mr. Baz Rawat feels very strongly for the RTF.
6: I don't agree with Mr. Baz Rawat.
7: हमारे देश को ऐसे स्पोर्ट की जरूरत है जिसमें थोड़ा स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा मेंटल पावर यूज हो।
8: ब्रेन पावर इज द मेन पावर यू सी।
9: व्हाट डू यू थिंक दिस इज ऑल अबाउट? फाइट भी तो ब्रेन से लड़ते हैं सर। अगर ये ब्रेन इस हाथ के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो सब खत्म।
10: स्ट्रेटेजी, रिफ्लेक्स, कोऑर्डिनेशन ये सब लगता है इस गेम में। यू गॉट टू थिंक ऑन योर फीट और योर डेड।
11: ए पीटर, जाएगा क्या? बोलना जाएगा क्या?
12: अरे जाएगा नहीं, गया।

0: बात हो रही है कि क्या इंडियन फाइटिंग सीन इज अप टू द मार्क?
1: या फॉरगेटिंग मिस्टर देसाई, ये अखाड़ों का देश है और एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट के लिए इतना एक्साइटमेंट होना कमाल की बात है।
0: तो फिर देर किस बात की? यही लाइव हमारे चैनल पर डिक्लेयर करें इंडिया के पहले आर्टीएफ फाइटर्स के नाम।
1: अरे थोड़ा पेशेंस रखिए, इंडिया का पहला मार्शल आर्ट इवेंट है, एक्शन से पहले सस्पेंस तो होना ही चाहिए।
0: मिस्टर पीटर ब्रिगांडा ऑफिस इज रिफ्यूज टू कंफर्म और डिनाई दिस, लेकिन हमारे सूत्रों से हमें ये पता चला है कि जर्मनी का हेवीवेट चैंपियन द ग्रेट लुका इंडिया आ रहा है। अगर ये खबर सच है तो लुका के आने से ये टूर्नामेंट पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल का हो गया।
2: दैट्स फैंटास्टिक, आई हैव सीन लुका फाइट, ही इज ग्रूसम, ही इज वेरी वेरी डेंजरस।
3: इधर देख
4: बात खत्म, कंपटीशन तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया।
5: आप ऐसा इसलिए कह रही क्योंकि द ग्रेट लुका कभी किसी इंडियन फाइटर से नहीं टकरा, कांटे की टक्कर होगी सर।
6: मैं

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। तो भाई देखिए, वीक का विटनेस डे आ गया है। मतलब सिंपल सा है, मंडे का शौक और ट्यूसडे की थकान, दोनों से चल रही है रिकवरी बराबर। लेकिन गुड न्यूज ये है कि वीकेंड अब दूर नहीं है ज्यादा, कुछ दिनों में वीकेंड भी आ जाएगा। थर्सडे फ्राइडे वाली बात है, और उसके बाद ना आप सैटरडे संडे चिल करना, जो करना है यार वो करना, क्योंकि ना वीकेंड का इंतजार जितना बेसब्री से आप करते ना, उतना ही बेसब्री से मैं करती हूँ। लेकिन मेरे तो वीकडेज भी बढ़िया होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपसे बातें करने का मौका जो मिलता है ना। डेली आती हूँ सुबह 7 से 11 मंडे टू फ्राइडे, आपके साथ बैठती हूँ, बहुत सारी बातें करती हूँ, ये बताती हूँ आपके अपने शहर में आज ट्रैफिक क्या कहने वाला है, साथ ही अगर बात की जाए वेदर की तो वेदर कैसे रहने वाला है, बहुत सारी अपडेट्स लेकर आती हूँ। तो आज भी बहुत सारी बातें लेकर आई हूँ, इस वेडनेसडे को बोरिंग वेडनेसडे तो नहीं बनने दूंगी। तो भाई करना क्या है, एंजॉय कीजिए ना ये ट्रैक, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: पीछे।
1: हाय गाइस, दिस इज आदित्य। होप यू लाइक द सॉन्ग चांद बालियां। कमेंट बिलो एंड शेयर योर थॉट्स विद मी।
0: ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां।

हाँ जी, थोड़ी सी बारिश होती नहीं है उससे दुखी हो जाते हो, तो फिर भगवान क्या कहता है? भगवान ना फिर बोलता है कि बेटा अब लो, अब गर्मी के मजे लो। तो भाई देखिए, अगर मैं आज बात करूँ ना, तो आज आपको अच्छी खासी गर्मी मिलने वाली है। हाईएस्ट टेम्परेचर भी अच्छा जाने वाला है। हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 33 डिग्री, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात करूँ 26 डिग्री है। और अगर मैं बात करूँ विंड स्पीड की, तो विंड स्पीड आपको 16 मिलने वाली है, ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 59%। तो भाई देखिए, सनी सनी दिन है, पानी की बोतल अपने साथ जरूर लेकर जाएगा, बिकॉज धूप बहुत है बाहर, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, और मैं नहीं चाहती ना आप बेहोश होकर गिर जाओ। तो यार देखिए, चक्कर शक्कर ना आए आपको, इसके लिए ना अपना ख्याल रखिए, हाइड्रेशन का ख्याल रखिए, और बहुत सारे गानों के बाद मिलने वाली हूँ आपको। तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलती है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. To हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज़ नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

अगर बात की जाए ना बचपन की, तो भाई वो दिन भी क्या दिन थे ना, जहाँ दोस्त बनाने के लिए ना किसी के आगे पीछे नहीं भागना पड़ता था, जहाँ दोस्ती करने के लिए ना किसी को कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता था, और सबसे बेस्ट फ्रेंड की अगर मैं बात करूँ ना, तो हर किसी का बेस्ट फ्रेंड एक टेडी बियर होता था, हर किसी के घर में ना वो टेडी बियर मिल ही जाता था। और मेरे बचपन के खिलौने तो आज तक मेरी मम्मी ने संभाल कर रखे, बिकॉज मेरी मम्मी को लगता है कि ये मेरी बेटी की निशानी है और इस निशानी को ना मैं किसी को नहीं दूंगी। तो भाई देखिए, अगर मैं आज भी उस टेडी को देखूँ ना, तो मन वही चला जाता है बचपन में। खैर आज मैं बातें क्यों कर रही हूँ बचपन की, बिकॉज आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल टेडी बियर डे। तो आज का दिन उन सभी फरी लिटिल फ्रेंड्स के नाम है जो बिना कुछ बोले हमें कंफर्ट देते हैं और ये बताते हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ कोई नहीं है लेकिन मैं हूँ, अगर तुम घर आओगी तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारे बेड पर ही तुम्हारे साथ तुम्हारी सारी चीजें शेयर करूंगा, तुम्हें कभी जज नहीं करूंगा, तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, तुम्हें हग करूंगा और हाँ बहुत सारा प्यार करूंगा। तो इसी के साथ ना हैप्पी नेशनल टेडी बियर डे जरूर सेलिब्रेट कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई लव्ड वन है ना, बिकॉज मैं तो सिंगल हूँ यार, मेरे पास कोई नहीं है, अगर मेरे पास कोई होता तो मैं आज पक्का उसे टेडी बियर जरूर गिफ्ट करती। देखिए यार, लड़कों को गिफ्ट ना बहुत कम मिलते हैं, ऐसा लड़कों की शिकायतें है, तो मैं तो बहुत पैम्पर करने वाली थी लेकिन कोई नहीं है, तो आपके पास जो है ना आप जरूर उसे पैम्पर कीजिएगा, जरूर उसे आज एक टेडी बियर गिफ्ट कर दीजिएगा। और इसी के साथ बातें बहुत सारी होने वाली हैं, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं ना थोड़े ही देर में।

इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

0: हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: अनजाने अजनबी।
2: शादी सिर्फ शादी नहीं होती, थोड़ी सी शर्माहट, थोड़ी सी मिठाई और
3: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
2: एक तरफ प्रेम, जो सीधा साधा लड़का, जो शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, और दूसरी तरफ हमारी पूनम, जो एक शर्मीली और सुशील लड़की, जो प्यार को एक समर्पण समझती है। नजर में शर्माना, घर वालों का आशीर्वाद और विवाह फिक्स।
4: सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे।

आजकल ना बहुत सारी चीजें मार्केट में आ गई। अगर मैं बात करूँ ना मिठाइयों की, तो जो पुरानी मिठाइयाँ थी ना, रसमलाई वगैरह, वो ना कहीं हट गई है। जो ये जेंजी है ना, ये तिरामिसू के पीछे पागल है। और हो भी क्यों ना भाई, गजब का टेस्ट है तिरामिसू का। तो भाई जितने भी तिरामिसू लवर है ना, अब आपका प्यार सिर्फ इंस्टाग्राम या फिर मेन्यू तक लिमिटेड नहीं है। बिकॉज इटली ने ना आपके लिए एक सुनहरा अवसर यानी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकाल दी है। इटली की अगर बात की जाए, जहाँ पर डिजर्ट लवर बनना ही क्वालिफिकेशन है, तो मैं आपको एक बार विस्तार से बता देती हूँ, यानी कि बहुत ही डिटेल में तिरामिसू कंपटीशन के बारे में बता देती हूँ। तिरामिसू वर्ल्ड कप इज लुकिंग फॉर 130 पीपल जो इस साल की कंपटीशन में तिरामिसू टेस्ट करे, जज करे। लेकिन ये सिर्फ खालो और मार्क्स दे देने वाला काम नहीं है। जज बनने के लिए पहले आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देना होगा, वो क्वेश्चंस पास करने होंगे, जिसके बाद कॉम्पिटिशन के रूल, तिरामिसू की हिस्ट्री, कल्चर और जितने भी रीजन से जुड़ा हुआ है ना, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2026 का ग्रैंड फिनाले 9 से 11 अक्टूबर तक इटली में होगा। तो देखिए बहुत ही बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है तिरामिसू का। सो अगर अब तक नहीं खाया ना, पहले जाकर खाइए, टेस्ट कीजिए, फिर इसके बारे में डिटेल्स लीजिए और फिर पहुंच जाइए इस कॉम्पिटिशन में। अगर फरीदाबाद में कॉम्पिटिशन होता ना, तो मैं जरूर जाता। कौन ही छोड़ना चाहेगा इस मीठे से कॉम्पिटिशन को। और यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में ना अगर कुछ अच्छा चाहिए ना, तो जिंदगी में मिठास होनी बहुत जरूरी है। अगर आज सुबह से कुछ मीठा नहीं खाया, कुछ मीठा नहीं बोला है ना, तो यार प्लीज खा भी लो कुछ मीठा, बोल भी लो कुछ मीठा, और हाँ जिंदगी को भी बना लो कुछ मीठा। इसी के साथ एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू डॉक्टर।

0: हाँ जी, फरीदाबाद की बात तो बहुत करी। चलिए अब थोड़ा सा बाहर निकल कर देखते हैं और यही देखते हैं कि आजकल सोशल से अपन हमें लेकर कहाँ जाते हैं। पहली बात तो ना यार, जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हो ना तो एक डर साथ में खरीद लेते हो, और वो डर ये है कि अगर इस कार को कुछ हो गया तो अपना क्या होगा। जिंदगी की ना, जिंदगी की सारी कमाई हमने इस पर लगा दी है, और जब वो घर में आती है ना तो घर का एक नया मेंबर होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई देखिए, जब भी कभी आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना नई, तो सिक्योरिटी भी भाई वीआईपी होनी चाहिए। और अगर अब तक ये वीआईपी सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता था ना, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर फरीदाबाद से सीधा चलते हैं बिहार। बिहार की एक फैमिली ने पहले स्कॉर्पियो खरीदे, और जब उन्हें लगा ना कि भाई गाड़ी तो बहुत ज्यादा महंगी है, अब इसे पार्क कहाँ करें। अब आप सोच के जरूर देखिएगा कि भाई कहाँ पार्क किया होगा। पार्किंग में ना, पार्किंग में पार्क नहीं किया इन्होंने, इस कार को कर दिया अपने घर की छत पे पार्क। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर छत तक कार कैसे गई। तो भाई क्रेन आई थी, क्रेन ने स्कॉर्पियो को उठाया, सीधा टेरेस पर चढ़ाया और पार्किंग को कर दिया बंद, लॉक्ड। यानी कि ना ये कार नीचे आ सकती है और ना ही कोई चोर इस कार तक जा सकता है। तो देखिए, अगर आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में कहीं भी पार्किंग की प्रॉब्लम थी ना, तो भाई ये वाला आइडिया जरूर अपना सकते हैं आप। इससे पता क्या होगा, इससे आपकी कार भी सेफ रहेगी और ना जब चाहे तब आप अपनी कार को जाकर देख सकते हैं, उसे निहार सकते हैं, आफ्टर ऑल पैसा जो खर्च किया है ना। तो भाई देखिए, ये सोशल सियापा ना बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर। जब लोगों ने ये देखा ना, तो लोग ना बस यही सोच रहे हैं कि भाई साहब ये कार फिर खरीदी ही क्यों है जब आप इस कार को चलाएंगे ही नहीं। तो भाई देखिए, शौक बड़े होने जरूरी है, लेकिन उन शौक के लिए ना इतना परेशान होना जरूरी नहीं है। तो आजकल सोशल सियापा मैंने आपको बता ही दिया है, और बहुत सारी बातें आज मेरे पास करने के लिए, लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: गुरु जब तो बिकने, जब तो बिकने, बोहिमिया

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगी। और ऑनेस्टली ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है, मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

हेलो हेलो जी, बहुत सारी बातों के बाद में अब मैं फाइनली लेकर आ गई हूँ आज का बिजनेस मंत्र। ये बिजनेस मंत्र ना हमें साइड इनकम देता है, यानी कि ये बताता है कि आप 9 to 5 के साथ ना एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हो। करनी कैसे? देखो भाई, बहुत ही सिंपल सा आज मैं आइडिया लेकर आई हूँ, बहुत ही सिंपल सा मंत्र है। और आज का मंत्र है होममेड ब्रेकफास्ट सब्सक्रिप्शन। देखिये, जितने भी ऑफिस जाने वाले लोग है ना, ये बेचारे ना घर के खाने के लिए तरस जाते हैं, खासकर वो गर्मा गर्म आलू का पराठा, दही, खीर, मतलब बहुत सारी चीजें यार जो मम्मी हमारे ब्रेकफास्ट में बनाती है। तो आपने करना है क्या, सिंपली आपने ब्रेकफास्ट बनाना है, एक व्हाट्सएप बनाना है और व्हाट्सएप पर ना एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप के अंदर आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, आपको उनका डेटा लेना है। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपको उनसे बात करनी है, उनको उस ग्रुप में ऐड करना है। एंड देन जो भी आपका एक मेन्यू है, आप वो मेन्यू अपना शेयर कर दीजिए, या फोटो शेयर कर दीजिए आपके खाने के, आपकी ब्रेकफास्ट ही। एंड फिर देखिएगा आपका जो बिजनेस है कितना बढ़िया चलता है। तो देखिए भाई, इस बिजनेस की गारंटी तो मैं भी ले रही हूँ, ना ज्यादा खर्चे की जरूरत है। बस अभी तक जो आप अपने घर वालों को खिलाते थे, वो अब आपको बाहर वालों को खिलाना है। सिंपल। तो भाई, बहुत ही टिकाऊ, बहुत ही किफायती बिजनेस है। इस बिजनेस को जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत सारे आइडियाज मैं लेकर आती रहूंगी। लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं ना थोड़े ही देर में।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो हेलो जी यार, कई बार ना हमें ऐसे लगता है कि अगर कुछ भी जरूरत है ना हमें जिंदगी में, तो वो सिर्फ गूगल ही पूरा कर सकता है। जैसे कोई नंबर चाहिए तो गूगल के पास चले जाओ, कोई रास्ता कोई डायरेक्शन चाहिए तो गूगल के पास चले जाओ, कोई मार्केट की कोई शॉप ढूंढनी है तो गूगल के पास चले जाओ। लेकिन कभी आपने सोचा ये गूगल भी किसी के पास तो जाता ही होगा ना? तो यार देखिए, ये गूगल आपको ले जा सकता है स्कैमर्स के पास। और यही हुआ है गूगल पर। अगर कभी भी आप किसी भी बैंक का कस्टमर केयर नंबर सर्च कर रहे हैं ना, तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जेन्युइन है या फिर नहीं, क्योंकि ना अब एक और स्कैम आ गया है मार्केट में। तो चलिए फटाफट से मैं आपको ये स्कैम बता देती हूँ। तो देखिए, आज का स्कैम हुआ है वडोदरा से। 63 ईयर्स ओल्ड फाइनेंसर के साथ एक स्कैम हो गया है। फेक बैंक के एम्प्लॉय ने उन्हें व्हाट्सएप पर एपीके ऐप डाउनलोड करवाया और उसके बाद में उनके अकाउंट से लगभग 20 लाख रुपए ठग लिए गए। मतलब सिंपल सा है, उन्हें पहले एक कॉल आया, एक ऐप डाउनलोड कराया और उनका अकाउंट खाली। ये कॉल इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर का नंबर जो है गूगल पर सर्च किया था। तो बस आज यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आपको जरूरत है आपके बैंक के कस्टमर केयर नंबर की, तो जाकर बैंक से ही कॉन्टेक्ट करें। उसके लिए किसी भी गूगल पर रेंडमली किसी भी नंबर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये सारा खेल हो सकता है स्कैमर का। और अगर आपको आपके अकाउंट को सेव करना है ना, तो ये छोटी सी चीज है जिसका आपको ख्याल रखना होगा। और इसी के साथ ही स्टे सेफ स्टे अलर्ट मिलता है ना कुछ ही देर में।

हम अक्सर कहते हैं ना दिल बच्चा है जी, लेकिन कभी आपको पता है कि बच्चों का दिल कितना बड़ा होता है? और अक्सर कहा जाता है दिल अगर बड़ा हो ना तो उम्र छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता। आज मैं आपके लिए फील गुड स्टोरी लेकर आ गई, और ये फील गुड स्टोरी एक बच्चे की है जो खुद अभी 6 साल का है लेकिन जज्बा बहुत बड़ा है। और ये कहानी ना आप सबका दिल जीत लेगी। सभी को पता है नेपाल में आया था इन दोनों फ्लड, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी नेपाल को झेलनी पड़ी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें हमारी जरूरत थी। और ऐसे में ये जो 6 साल का बच्चा है जिसका नाम है अरबाज, ये अपना पिगी बैंक लेकर आया नेपाल के लिए, अपना जितनी भी सेविंग थी ना वो डोनेट करने के लिए। अब एक बार सोच के जरूर देखेगा, एज में भले ही ये बच्चा है लेकिन जज्बा बहुत बड़ा रखा है। और जब इसकी फैमिली से बात की गई ना, इस बच्चे की फैमिली से, तो उन्होंने बताया ये बहुत टाइम से अपने टॉयज के लिए सेविंग कर रहा था, लेकिन जब इसे पता चला नेपाल के बारे में तो ये बच्चा इसने खुद इनिशिएट किया, अपना पिगी बैंक लेकर आया और डिसाइड किया कि जो सारा पैसा है वो डोनेट कर देगा नेपाल के लिए। उम्र भले ही छोटी है और पिगी बैंक भी भले ही छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप हेल्प करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि आप अभी इतने काबिल नहीं है हेल्प करने के, तो जो भी आपसे बनता है, तो जो भी आपके पास है, जितना आपसे बनता है ना, उस चीज से हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज हेल्प करने के लिए ना कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको इतना ही पैसे किसी को डोनेट करने हैं या फिर आपको किसी की हेल्प सिर्फ पैसों से ही करनी है। और ये इंसानियत है, और इंसानियत जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी कहानी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें आज आपके साथ करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अब वक्त हो गया है इस म्यूजिक ब्रेक का, तो एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है ना थोड़ी देर में।

ना है आज बस ये लगता है यू शुड नो है मन उदास का पे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ जो भी है पास है उस पे नाज बस कहना है थैंक्स लॉट।

Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. To हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. Thank you. Doctor.

हेलो हेलो जी फरीदाबाद। तो फाइनली मैं आ गई हूँ इतने एक्साइटमेंट के साथ, बिकॉज अब टाइम हो गया दिमाग की बत्ती जलाने का। और दिमाग की बत्ती जलाने का सबसे बढ़िया तरीका है फरीदाबाद की पहेली। तो देखिए, आज की जो मैं पहेली लेकर आई हूँ ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहले पहेली जान ही लेते हैं। नाम मेरा एक जानवर से मिलता है, पर जंगल में मेरा कोई ठिकाना नहीं। फरीदाबाद में मेरी पहचान पुरानी, बताओ मैं हूँ कौन। चलिए एक हिंट दे देती हूँ, जहाँ शॉपिंग भी होती है और शाम भी सुहानी होती है। अब बताइए शाम शानदार करने का प्लेस कौन सा, यानी कि ऐसा कौन सा वो प्लेस है जहाँ आप जाके शॉपिंग भी करते हो और एंजॉय भी करते हो उस प्लेस को। तो आपको बताने के लिए कहाँ जाने, तो फटाफट से आ जाइए अपने जवाब लेकर। मैं मिलती हूँ ना आपको रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर देखती हूँ किसका मैसेज मुझे पहले आता है। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलती हूँ इस ब्रेक के बाद।

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

हाँ जी, डू यू नो से चलिए बात कर लेते हैं डिड यू नो पर। यार ये उवासियों की अगर मैं बात करूँ तो एक इंसान लेता है उसे देख कर ना सामने वाले इंसान की भी उवासी निकल जाती है, यानी कि योनिंग अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो। बोला था ना, अगर बात भी कर लो ना तो आ जाती है यार। तो देखिए भाई, नींद मैं पूरी कर आई हूँ फिर भी उवासी आ गई मुझे। सो आज मैं डिड यू नो लेकर आई हूँ। अभी जब मैंने उवासी ली तो आपको भी उवासी आई गई होगी ना भाई, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कहते हैं जब आप किसी को यौन करते हुए देखते हैं, इवन जो हवा वाली आवाज है ना, अगर आप वो भी सुन लेते हैं ना तो उससे भी ना आपको यौन आ जाती है, पढ़कर भी उवासी आ जाती है भाई। क्योंकि ना इसका कनेक्शन पता है किसी चीज से है, इस यौनिंग को कहते हैं कंटीजियस यौनिंग। तो अगर आपको कोई पूछे ना कि यार ऐसे क्यों होता है, तो बता देना कि भाई ऐसे इसलिए होता है। तो देखिए सामने वाला इंसान आपको कितना इंटेलिजेंट समझने वाला है ना। एंड आई एम डैम श्योर जब मैंने यौन की थी ना, आपने भी यौन जरूर की होगी। तो देखिए आज के डिड यू नो में यही था कि इस चीज को कहते क्या है, और कल नहीं अभी थोड़ी देर में फिर से मिलेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

आज का एक छोटा सा प्लांट और कल के सांसों के लिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट, यही कहा जाता है प्लांट्स के लिए और यही माना भी जाता है। अगर आज आप एक प्लांट लगाएंगे ना, तो कल आपकी आने वाली जनरेशन को एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा। सो देखिए, यही इनिशिएटिव लेकर हम आ गए हैं, यानी कि रेडियो महारानी ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। सो ये एक तरह की प्लांटेशन ड्राइव है, जहाँ पर हमारे साथ स्कूल, कॉलेजेस, आसपास के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये ड्राइव पूरे 10 दिन रहने वाली है, यानी कि 10 दिन हम हर जगह को हरा भरा करने वाले हैं। हम अपने पास से प्लांट्स लेकर जाएंगे, स्कूल्स में लगाने वाले हैं, कॉलेजेस में लगाने वाले हैं, और यहाँ सिर्फ हम इस प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा नहीं होंगे, हम ये मौका आपको भी दे रहे हैं, आप भी बन सकते हैं ऑक्सीजन मास्टर, यानी कि अब आप आ सकते हैं रेडियो महारानी के ऑफिस, हम यहाँ पर आपको एक प्लांट देंगे और बस वो प्लांट आपको अपने एरिया में लगाना है। सो ये ड्राइव सिर्फ हमारी नहीं है, ये ड्राइव आप सबकी है, और इस ड्राइव में सिर्फ हम या आप नहीं जुड़ेंगे, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि प्लांट लगाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से केयर करनी चाहिए, किस तरह से हमारे प्लांट्स को सर्वाइव करना चाहिए, और साथ ही मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए। सो इन सारी चीजों पर भी बात करेंगे। तो फरीदाबाद रेडी हो, प्लांट टुडे ब्रीच टमोरो के लिए, और 10 दिन हमारे साथ जुड़े रहिए और बनिए ऑक्सीजन मास्टर। और इसी के साथ ही ना, एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: Plan today.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

हाँ जी, फरीदाबाद वालों, बहुत ज्यादा लेजी हो रहे हो और इस लेजी बन को दूर करने के लिए ना, इस आलस को दूर करने के लिए ना, आज मैं फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ। और आज का फिटनेस वाला फंडा हमारे फरीदाबाद को बनाने वाला है फिट फरीदाबाद। हाँ जी, फिटनेस वाली फंडे की बात कर रही थी। और अगर आप भी सोच रहे हैं ना कि चलो सुबह हो ही गई है, अपनी फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दिया ही जाए, तो देखिए भाई, फरीदाबाद लेकर आ गया आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका, क्योंकि फरीदाबाद में 27 सितंबर को सूरज कुंड मेला ग्राउंड में होने जा रही है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026। और आपको पता है खास बात क्या है? अगर अभी तक मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर भी करा लिया खुद को। तो भाई देखिए, जो हमारा फरीदाबाद है वो तो इस रेस में निकल पड़ा है, अब बारी आपकी है। अगर मैं रेस की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको 21.1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तक का रन मिलेगा। यानी कि मैराथन अब हर किसी के लिए होने वाली है, फिर चाहे आप बिगनर है या फिर है आप एक प्रोफेशनल रनर, हर कोई इस मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दौड़ना ही नहीं है, अगर दौड़ते दौड़ते आप जीत भी गए ना, तो पता है आपको 21.1 किलोमीटर की ओवरऑल जितने भी विनर्स है ना, उनको मिलेगा 1,00,000 रुपए का प्राइज। तो भाई देखिए,

फिटनेस भी होने वाली है, बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है, तो और क्या ही चाहिए। और अगर मैं इस मैराथन की बात करूँ ना, तो ये सिर्फ एक रेस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैसेज हमें बताता है हेल्दी लाइफस्टाइल और नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प। सो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं कराया खुद को, तो अभी जाइए, खुद को रजिस्टर कराइए। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा faridabadhalfmarathon.in पर। यहाँ पर आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं और इस मैराथन से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अभी जाइए, रजिस्टर कराइए खुद को, और फिर मिलते हैं ना 27 सितंबर को सूरज कुंड मेला ग्राउंड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

और अब सिनेमा का कैप्सूल की एक ऐसी बात जिसको सुनकर बॉलीवुड फैंस कहेंगे ओहो ये कॉम्बिनेशन तो इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं हैवान की। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक तरफ अक्षय कुमार, दूसरी तरफ सैफ, और दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। मतलब नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। अक्षय और सैफ को साथ देखना अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग स्क्रीन पर्सनैलिटीज, एक तरफ अक्षय की एनर्जी और दूसरी तरफ सैफ का बिल्कुल अलग एक्टिंग स्टाइल और ऊपर से प्रियदर्शन। तो उम्मीद तो यही है कि फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। फिल्म को लेकर अभी से बस बनना शुरू हो गया है और फैंस खास तौर पर इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतने सालों बाद ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर कैसा जादू करेगा। तो जब बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, तब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब हैवान कितनी बड़ी धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस फिल्म पर नजर रखनी तो पड़ेगी। बॉस, मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल सिर्फ रेडियो महारानी पर।

हाँ जी, बातें तो बहुत सारी हुई हैं और बहुत सारी मेरे पास जवाब भी आए हैं और जवाब आए हैं फरीदाबाद की पहेली के। तो देखिए, टाइम ज्यादा ना खराब करते हुए मैं ये आपको ये बता देती हूँ कि जो सही जवाब दिया है वो है श्वेता ने। अब लगता है श्वेता है शॉपिंग पगलू, क्योंकि श्वेता ने बताया एक्चुअली जो पहेली तुमने पूछी है ना उसका जवाब है यार क्राउन इंटीरियर्स मॉल। तो श्वेता बात बिल्कुल सही की है, इसी मॉल की मैं बात करी थी और इसी मॉल तक आप भी पहुंच गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हैं और इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है आप शॉपिंग बंगलू बहुत ज्यादा हो, ये हमें पता चल रहा है। और इसी के साथ मैं बस यही कहूंगी, ऐसे ही फरीदाबाद को प्यार देते रहिए, फरीदाबाद को एक्सप्लोर करते रहिए और एंजॉय कीजिए ट्रैक। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: क्या ये सब?
1: क्या
2: So, I think it deserves a bit better.

एक 40 साल की जिंदगी में काम में बच्चों में बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें। अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर। थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती, यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर, यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है। फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज्ड, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो। इस टाइम पे बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, बहुत लोग बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं अपने पार्टनर से, दे आर गोइंग थ्रू अ एरे ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग व्हेन यू आर सिटिंग विद द राइट पीपल। पांचवी चीज, यू विल हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज अब आपकी जैसा आपका पहले जैसा सुंदर दिखना, आपकी डाइट का चेंज होना, आपका वेट गेन होना, आपको बहुत वेट गेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी। ये पांचवी चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन योर लिस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल, यू हैव गुड मनी ऑल्सो, यू हैव गुड लाइफ ऑल्सो, पर ये पांच चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू।

बहुत सारी बातों के बाद, बहुत सारे एंटरटेनमेंट के बाद, बहुत सारे गानों के बाद, यानी कि बहुत बहुत बहुत करके ना मैं 7 से 11 पर आ गई हूँ। पूरे 4 घंटे आज आपके साथ थी, डेली होती हूँ मंडे टू फ्राइडे 7 to 11 AM और बहुत सारी बातें करती हूँ। लेकिन अब वक्त हो गया ये जानने का कि आखिर आज मम्मी ने ना मेरे टिफिन में क्या दिया। तो आज सुबह क्या था, रात को मैंने खाना नहीं खाया, मम्मी को आ गया गुस्सा, मम्मी ने आज मुझे टिफिन नहीं दिया। कि ये जो तुम्हारी खाना ना खाने की आदत है ना, अब इस आदत को तुम बरकरार रखो, मेरी मम्मी का ये कहना था। और जब मम्मी गुस्से में आती है ना, तो फिर बहस नहीं करनी चाहिए, फिर जैसा वो कहते हैं ना वो मान लेना चाहिए। तो आज मैं आई हूँ बिना टिफिन के, और अगर आज जब मैं बिना टिफिन के आ ही गई हूँ तो आज ना थोड़ा सा चीट मील होने वाला है। लेकिन आप मुझे जरूर बताइए कि आज आपके लंच बॉक्स में क्या आया है, आखिर आज आपकी मम्मी ने क्या दिया है आज आपको लंच बॉक्स में। और बताने के लिए ना आपको पता है कहाँ जाना है, फटाफट से आ जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर आप हमारे साथ जो भी कुछ आपके मन में है ना वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक। फिलहाल मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आज जाऊंगी तभी तो कल आऊंगी ना, तो मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

सपनों की भी ना एक बहुत अच्छी कहानी है, और एक आज मैं कोट पढ़ रहा था तो मेरे को लगा यार सपने को इस तरह से भी तो देखा जा सकता है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और शुरुआत होती है यहाँ से नारी नंबर वन शो की। और कोट बताएं कुछ इस तरह था, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आए, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सोते समय जो सपने आ रहे हैं वो सिर्फ वो हैं जो आपके माइंड में चीजें पूरे दिन की क्योज और सारी चीजें आपके माइंड में रह गई हैं या कुछ लोगों की यादें रह गई हैं। बट असली सपने और असली अचीवमेंट वाले सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, जिनके लिए आप रातों में उठ रहे हो, जिनके लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो, जिनके लिए आप दिन भर मेहनत कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में वो चीज अचीव करना चाहते हो या अपने आप को उस पोजीशन पे देखना चाहते हो। और एज अ वुमेन, अगर मैं से एक नारी की बात करूं तो वो नारी के जो सपने हैं ना वो अक्सर सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं एक्स वाई जेड रीजन की वजह से। बट अब की जो नारी है वो ये नहीं कहती है, वो कहती है मैं अपने सपनों को भी प्रायोरिटी दूंगी और साथ ही साथ अपने जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें भी प्रायोरिटी दूंगी और इनका एक बैलेंस बना के लाइफ में चलूंगी। तभी तो हम उसको कहते हैं कि नारी जो है वो है नारी नंबर वन। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

आज सोशल स्पॉटलाइट में इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना इक्वल राइट्स, इक्वल चीजें, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। दरअसल एक महिला है जो बिहार में दरभंगा बस से ट्रैवल करके जा रही थी, तो वहां पर उन्होंने लड़ाई कर ली एक पुरुष से, एक मेल से, ये कह के कि ये विंडो सीट जो है ना ये लड़की को ही मिलनी चाहिए। ये एक सिविक सेंस होना चाहिए आपके अंदर कि एक लड़की आई है तो उसे विंडो सीट दी जाए। मैडम ये कहाँ का सिविक सेंस है पहले तो आप ये बताइए, और इस बिहाफ पे आप उनसे लड़ भी रही हैं कि नहीं आपको विंडो सीट ही चाहिए। मैडम बस में और भी सीटें हैं, आप उनको यूज करके वहां पर बैठ सकती हैं। कोई फीमेल सीट पर बैठा हो आप वहां पर उनको उठा के बैठ सकती हैं, वो बात मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, बट ये विंडो सीट की जो लड़ाई है ये तो कोई सिविक सेंस में भी नहीं आ रही है और वुमेन राइट में भी नहीं आ रही है। और उसके बाद भी हम वुमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो अगर वो मेल वहां सीट पे बैठा है तो एज अ इक्वल अगर आप वुमेन को ट्रीट करना चाह रहे हैं तो उसका भी उतना ही राइट है उस सीट पे बैठने का, अगर आप इक्वल राइट्स की बात करेंगे। तो आप किस बिहाफ पे वहां पर रोब झाड़ के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के उसे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखिए हमारी सीट से नहीं उठ रहा, सिविक सेंस नहीं आज के लोगों में, आपने ये सब बोला और सोशल मीडिया पे आप खुद ट्रोल हो रही हैं, स्पॉटलाइट में आ गई आप निगेटिव वाली। पॉजिटिव होती तो बात अलग थी कि आप अपनी सीट दे देती किसी को कि, और उसकी वीडियो डाली होती कि नहीं यार ये देखो मेरा सिविक सेंस ये है, नहीं मेरी जो एक कर्टसी है वो ये है कि उनको नीड थी मैंने सीट दे दी। बट अपनी सीट के लिए लड़ना, वो भी स्पेशली मेंशन करके विंडो सीट नहीं दे रहा है मुझे, ये तो गलत बात है ना मैडम। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर calling.

एक महिला ना पूरा संसार बदल सकती है। संसार क्या, आप सबके माइंडसेट भी बदल सकती है अगर उसने ठान लिया। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो वुमेन की हम बात करने वाले हैं, शी चेंज द वर्ल्ड, नहीं, शी हैव चेंज द माइंडसेट्स ऑफ पीपल। कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो एक लगन है या वो डेडिकेशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले एक अपार्टमेंट में आग लगती है और वहां आग लगने की वजह से बहुत सारे लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। लगभग 70 लोग वहां पर फंसे होते हैं। उस बीच में ये एक महिला है जो उसी बिल्डिंग में काम करने जाती थी लोगों के घरों में, बट वहां पर इसने कहा नहीं, मैं आज इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और वो सिर्फ 17 साल की थी और नाम था करीना थापा, और उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। ये LPG ब्लास्ट था जिसकी वजह से बिल्डिंग में आग लगी थी, और ये वहां गई और जितने भी लोग वहां थे उनको वहां से सेफली निकाल के बाहर लेके आई। लगभग 70 से ज्यादा लोगों की जान इन्होंने अकेले वहां पर बचाई थी। तो और इसी चीज को ध्यान रखते हुए इन्हें बाल पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और ये बाल पुरस्कार उनको मिलता है जिन्होंने छोटी उम्र में कुछ ऐसा कर दिया होता है जो शायद सोसाइटी के बड़े बड़े लोग भी सोच नहीं पाते हैं। तो ये जो सोच है ना इनकी, कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो, वहां से उनको बचा के लाओ, क्योंकि मैं तो सेफ हुई, मुझे पता है कि कहां से किसको कैसे निकाल के आ सकते हैं क्योंकि मैं इस बिल्डिंग में डेली काम करने जा रही हूं, तो उसको उन्होंने बहुत ब्रेवली वहां पर यूज किया और सब लोगों को सेव करके बाहर लेके आई। शी हैव सेव्ड द पीपल, शी हैव चेंज्ड द वर्ल्ड, शी हैव चेंज्ड द माइंडसेट। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

भाई ये चाइना वाले बीच बीच में ऐसी चीजें कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं गुरु, मेरे दिमाग से बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स चले जाती हैं कभी कभी। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और चाइनीज वुमेन्स ने एक ऐसी चीज ढूंढ के निकाली है, ये कह रही है कि हम बहुत लॉन्ग टाइम वर्किंग आवर्स में अपने ऑफिस में रहते हैं, जिस वजह से हम अपनी स्किन का और अपना जो लुक है उसका टेक केयर नहीं कर पा रहे, और ये हम टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से हम थोड़े से डल डल दिखने लग गए हैं, वर्किंग आवर्स में बहुत इन्वॉल्व रहने गए हैं। तो अब हम वर्किंग आवर्स में ही ये सब करा करेंगे, तो वहां पर काम क्या करेंगे आप, ये डिसाइड कर रहे हैं। नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम एक फेस मास्क अपने चेहरे पे लगाए रहेंगे, सनग्लासेस लगाए रहेंगे, हैट लगाए रहेंगे, जिससे जो भी आसपास की चीजें हो वो हमें इफेक्ट ना करें, और ये हम लगा के तब हम काम करेंगे। हम ये तो कह नहीं रहे हम काम नहीं करेंगे, बट हमें ये सब लगाना अलाउड कर दिया जाए कि हम ये सब लगा के वहां पर काम करेंगे, तो हमारी स्किन जो रूटीन है वो भी मेंटेन रहेगी और साथ ही साथ आपका काम भी होता रहेगा। हम आपका काम डिस्टर्ब करने के लिए तो नहीं कह रहे, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वैसे भी जब हम ऐसे किसी चाइना के इंसान से मिलते हैं ना, मोस्टली फेस वहां पर जो है वो सिमिलर नजर, उसके ऊपर भी आप मास्क लगा लेंगे एक ही कलर के, अगर एक रो में 5 लगा के बैठ गए तो बॉस आके पहचानेगा कैसे कि ये इंसान ये है, ये इंसान ये है, ये इंसान ये है। कुछ तो बॉस के बारे में भी सोचो यार आप लोग। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: अंजलि।
1: हाँ जी, फरीदाबाद की बात तो बहुत कही। चलिए अब थोड़ा सा बाहर निकल कर देखते हैं और ये देखते हैं कि आजकल सोशल से आप हमें लेकर कहाँ जाते हैं। पहली बात तो ना यार, जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हो ना तो एक डर साथ में खरीद लेते हो, और वो डर ये है कि अगर इस कार को कुछ हो गया तो अपना क्या होगा। जिंदगी की ना, जिंदगी की सारी कमाई हमने इस पर लगा दी है, और जब वो घर में आती है ना तो घर का एक नया मेंबर होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई देखिए, जब भी कभी आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना नई, तो सिक्योरिटी भी भाई वीआईपी होनी चाहिए। और अगर अब तक ये वीआईपी सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता था ना, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर फरीदाबाद से सीधा चलते हैं बिहार। बिहार की एक फैमिली ने पहले स्कॉर्पियो खरीदे, और जब उन्हें लगा ना कि भाई गाड़ी तो बहुत ज्यादा महंगी है, अब इसे पार्क कहाँ करें। अब आप सोच के जरूर देखिएगा कि भाई कहाँ पार्क किया होगा। पार्किंग में ना ना ना, पार्किंग में पार्क नहीं किया इन्होंने, इस कार को कर दिया अपने घर की छत पे पार्क। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर छत तक कार कैसे गई। तो भाई क्रेन आई थी, क्रेन ने स्कॉर्पियो को उठाया, सीधा टेरेस पर चढ़ाया और पार्किंग को कर दिया बंद, लॉक्ड। यानी कि ना ये कार नीचे आ सकती है और ना ही कोई चोर इस कार तक जा सकता है। तो देखिए, अगर आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में कहीं भी पार्किंग की प्रॉब्लम थी ना, तो भाई ये वाला आइडिया जरूर अपना सकते हैं आप। इससे पता क्या होगा, इससे आपकी कार भी सेफ रहेगी और ना जब चाहे तब आप अपनी कार को जाकर देख सकते हैं, उसे निहार सकते हैं, आफ्टर ऑल पैसा जो खर्च किया है ना। तो भाई देखिए, ये सोशल स्यापा ना बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर। जब लोगों ने ये देखा ना, तो लोग ना बस यही सोच रहे हैं कि भाई साहब ये कार फिर खरीदी ही क्यों है जब आप इस कार को चलाएंगे ही नहीं। तो भाई देखिए, शौक बड़े होने जरूरी है, लेकिन इन शौक के लिए ना इतना परेशान होना जरूरी है। बेस्ट ऑफ अंजलि।
2: इत की लत मोहे ऐसी लागी,

हाँ जी, तो महिलाओं के थोड़े से हक की बात और कर ले और महिला को थोड़ा सा और उनके ही राइट्स के बारे में नॉलेज दे ले। 89.6 रेडियो महारानी और तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और आज जो मैं राइट की बात करने जा रहा हूँ, हर महिला को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि कई बार ये मिसअंडरस्टूड हो जाता है। राइट टू पे इक्वल। अब यहाँ पर आप जब डेट पे जा रहे हैं या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वहां पर आपको इक्वल पे करना, ये उस चीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर राइट टू पे इक्वल से होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जितनी सैलरी आपके उस लेवल पे एक मेल एम्प्लॉय को मिल रही है उतनी ही आपको भी मिलनी चाहिए। पे इक्वल यहां से हम रिलेट कर रहे हैं। जितना काम आप कर रहे हो, अगर सेम एक कोई मेल कर रहा है, जितनी जिम्मेदारी आपके पास है उतनी ही एक मेल एम्प्लॉय के पास है, और जिस लेवल पे आप हो और उसी लेवल पे वो मेल एम्प्लॉय है, मतलब सब इक्वल होगा तो सैलरी भी इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं, अब ये हो सकता है कि वो बहुत साल पुराना हो किसी कंपनी में और आप अभी आए हो, तो धीरे धीरे आप वहां तक पहुंचो और आप थोड़े से कम एक्सपीरियंस हो, तो ये सारी चीजों आपको मैच करनी है। ये नहीं कि आप भी डायरेक्टर पोस्ट पे गए, वो भी डायरेक्टर पोस्ट पे है, तो आप कहो नहीं मुझे इक्वल सैलरी चाहिए। एक्सपीरियंस वहां पर मैटर करता है, बट आप भी उतने ही एक्सपीरियंस हो, 6 साल, वो भी 6 साल एक्सपीरियंस और सेम पोस्ट पे हो, देन यू कैन फाइट फॉर योर राइट कि मुझे भी इतना पे मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरा अधिकार है और अपने अधिकार के लिए बोलना कभी भी गलत नहीं होता है। तो राइट टू पे इक्वल का सिंपल ये मतलब है। और बाकी अगर आप अच्छा कमा रही हैं तो डेट पे जाइए तो वहां भी पे इक्वल कर लिया करिए, थोड़ा मेन का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। बी अ स्मार्ट वुमेन वाला एक कदम उठा लीजिएगा। और 89.6 रेडियो महारानी सुनते रहिएगा।

एक आदमी को ना बहुत बड़े बड़े गिफ्ट, बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें वो छोटी छोटी चीजें चाहिए और वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाने वाले हैं। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ। अब आप बोलोगे ना वो छोटी छोटी चीजें क्या है। देखिए वो छोटी छोटी चीजें ये हैं कि जैसे किसी इंसान को घड़ी पसंद है तो नॉट बहुत महंगी, बट आप उसे कोई नॉर्मल घड़ी भी ला के दे दोगे ना जब उसका कोई स्पेशल डे आ रहा हो तो वो बहुत खुश हो जाएगा आपसे, तो ये एक छोटी वाली खुशी। कई लोग मेंस होते हैं जिन्हें डीओ बहुत पसंद होता है, डीओ का अच्छा कलेक्शन करते हैं, तो वो एक छोटी डीओ की बॉटल भी उनको ला के दे देंगे, नॉट सो एक्सपेंसिव, मैं एक्सपेंसिव डीओस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो भी वो बहुत खुश हो जाएंगे। शूज का कलेक्शन, ऐसे मेंस की बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, बहुत सारे मेंस होते हैं जिन्हें अपने जूतों से बहुत प्यार होता है, तो उनकी जूते जो होते हैं ना उनसे अपना आप डिस्टेंस बना के रखिए। ये नहीं कि जूते इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, भाई ये छोटी छोटी चीजें उन्हें बहुत हर्ट कई बार कर जाती हैं। तो अगर आपको पता है आपके मेन को क्या पसंद है, तो पहले तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए एक मेन के बारे में, तो जो उसे पसंद है उसकी उस चीज का अगर आप टेक केयर कर लोगे ना तो मेन से बढ़िया इंसान आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ उसकी उस चीज की केयर कर लो जो उसे सबसे पसंद है, बस दैट्स इट। अगर उसे खाना पसंद है तो उसे अच्छा खिला दो तो वो सबसे खुश रहने वाला। तो आपको अब फिगर आउट करना है आपका जो मेन है उसकी सबसे फेवरेट चीज क्या है, और उसके लिए वही हर थोड़े थोड़े टाइम बात करते रहो तो आपका जो रिलेशनशिप है या जो आपकी लव लाइफ है वो बेटर चलती रहेगी। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: देख के फॉलो तो करते हैं एंड लैंडेड अप इनटू बिग प्रॉब्लम्स. तो एक बेसिक सी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज पेरेंट्स आर मच अवेयर, एजुकेटेड एंड नॉलेजफुल. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

आपको रेडी होना पड़ेगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि फरीदाबाद हाफ मैराथन फिर से एक बार आ रहा है अपने 2026 के एडिशन के साथ, जहाँ देश भर के रनर जो हैं उनमें जोश और जज्बा फिर से उतना ही एंथुसियास्ट के साथ हमको देखने मिल रहा है। 27 सितंबर 2026 सूरज कुंड मेला ग्राउंड से होने वाली है ये मैराथन की शुरुआत, और अभी तक 1,00,000 से ज्यादा इसके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो आप पीछे ना रह जाए तो रजिस्टर अभी कर लीजिएगा। और इसके बारे में डीसी आयुष सिन्हा जी ने भी बताया है कि इवेंट का जो उद्देश्य है वो सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है और नशा मुक्त हरियाणा का जो संदेश है वो पूरे हरियाणा तक पहुंचाना है, पूरे फरीदाबाद के लोगों तक पहुंचाना है। मैराथन में जो रेसेस होंगी वो होंगी 21.1 किलोमीटर की मैराथन होगी, 10 किलोमीटर की होगी, 5 किलोमीटर की होगी, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने वाली है। आपका टाइम जो है वो सब कुछ मेजर करा जाएगा और कुल 10,00,000 रुपए का प्राइज मनी भी रखा गया है, तो इस प्राइज मनी के लिए ही दौड़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, अपने आप को अभी रजिस्टर करिए इनकी वेबसाइट पे जाके www.faridabadhalfmarathon.in पर। अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए ये मैराथन में जरूर पार्टिसिपेट करिए, हो सकता है वो एक दिन आपकी रनिंग जर्नी को, आपकी हेल्थ की जर्नी को बिगिन करने में आपकी मदद जरूर करे। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सनम का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

ये जो आईलाइनर है ना यार, ये तुम पे कितना ही सूट कर रहा है, तुम पे कितना अच्छा लग रहा है। अक्सर हम तारीफ में बोल देते हैं, बट ये आईलाइनर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, तब ये आईलाइनर नहीं था, तब ये सिर्फ एक कोयला था। और मैं आईलाइनर की हिस्ट्री बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराना एक फैशन पार्ट बना हुआ है, जहां पर पहले लोग इसे सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाते थे बहुत सारी चीजों से। और ये आईलाइनर की शुरुआत जो है वो एशियन इजिप्ट, मतलब 5000 साल पहले हुई थी, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता था इसे अपनी आंखों के ऊपर लगाने के लिए, जहां पर वो तेज धूप से बचाता था, उन्हें बहुत सारी चीजों से राहत देता था, आईज इन्फेक्शन से बचाता था, क्योंकि ये डायरेक्ट आईज पे प्रभाव नहीं पड़ने देता था, तो ये बहुत सारी चीजों से बचा रहा था, तो लोग तब लगाते थे। फिर क्वींस हो गए, किंग्स हो गए, या उसके बाद की जो जनरेशन हो गई, वो मेल और फीमेल दोनों लगाते थे। बट धीरे धीरे फीमेल ब्यूटी का पार्ट बनता चला गया, इसे लगाने के तरीके बदलते चले गए, फिर ये पेंसिल के रूप में आ गया, और उसके बाद आज अलग अलग टाइप पे, जैसे आपको बोल्ड चाहिए, आपको थिन चाहिए, आप उस अकॉर्डिंग यूज करके अपने आईलाइनर्स को लगा सकते हैं और एक ब्यूटी सिंबल सामने वाले इंसान को दिखा सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तुम्हारा वो आईलाइनर यार आज बहुत अच्छा था, वो जो एक्स्ट्रा आई के बाहर तुमने निकाला था वो तो क्या ही लुक दे रहा था। तो आपको ये हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि ये आज से नहीं, 5000 साल पहले से फीमेल्स लगाती हुई चली आ रही हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: चली।
1: हाँ जी, फरीदाबाद की बात तो बहुत करी। चलिए अब थोड़ा सा बाहर निकल कर देखते हैं और यही देखते हैं कि आजकल सोशल से आप हमें लेकर कहाँ जाते हैं। पहली बात तो ना यार, जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हो ना, तो एक डर साथ में खरीद लेते हो, और वो डर ये है कि अगर इस कार को कुछ हो गया तो अपना क्या होगा। जिंदगी की ना, जिंदगी की सारी कमाई हमने इस पर लगा दी है, और जब वो घर में आती है ना, तो घर का एक नया मेंबर होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई देखिए, जब भी कभी आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना नई, तो सिक्योरिटी भी भाई VIP होनी चाहिए। और अगर अब तक ये VIP सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता था ना, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर फरीदाबाद से सीधा चलते हैं हम बिहार। बिहार की एक फैमिली ने पहले स्कॉर्पियो खरीदे, और जब उन्हें लगा ना कि भाई गाड़ी तो बहुत ज्यादा महंगी है, अब इसे पार्क कहाँ करें। अब आप सोच के जरूर देखिएगा कि भाई कहाँ पार्क किया होगा। पार्किंग में ना, पार्किंग में पार्क नहीं किया इन्होंने, इस कार को कर दिया अपने घर की छत पे पार्क। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर छत तक कार कैसे गई। तो भाई क्रेन आई थी, क्रेन ने स्कॉर्पियो को उठाया, सीधा टेरेस पर चढ़ाया और पार्किंग को कर दिया बंद, लॉक्ड। यानी कि ना एक कार नीचे आ सकती है और ना ही कोई चोर इस कार तक जा सकता है। तो देखिए, अगर आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में कहीं भी पार्किंग की प्रॉब्लम थी ना, तो भाई ये वाला आइडिया जरूर अपना सकते हैं आप। इससे पता क्या होगा, इससे आपकी कार भी सेफ रहेगी और ना जब चाहे तब आप अपनी कार को जाकर देख सकते हैं, उसे निहार सकते हैं, आफ्टर ऑल पैसा जो खर्च किया है ना। तो भाई देखिए, ये सोशल सियापा ना बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर। जब लोगों ने ये देखा ना, तो लोग ना बस यही सोच रहे हैं कि भाई साहब, ये कार फिर खरीदी ही क्यों है जब आप इस कार को चलाएंगे ही नहीं। तो भाई देखिए, शौक बड़े होने जरूरी है, लेकिन उन शौक के लिए ना इतना परेशान होना जरूरी है।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

0: 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। ये दो अलग, एक ट्रैवल इज समथिंग डिफरेंट और फिटनेस इज डिफरेंट, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं शायद हम वो फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं। तो मैं ये जान रहा हूँ ये दोनों चीजों का बैलेंस आप कैसे करके चल रहे हो कि वो भी मैनेज करना और प्लस फिटनेस भी मैनेज करना।
1: देखिए इसमें मैनेज नहीं होता है, इसमें ये होता है कि आप अपनी लाइफ में कैसे चल रहे हैं। कई बार होता है कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप अपने आप को भूल जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने अपने बारे में आपको सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। कि ऑटोमेटिकली ये होता है कि अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, आप खुद खुश रहेंगे, तभी आप अपने घर वालों को खुश रख सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है अपने आप के बारे में थोड़ा बहुत सोचना।
0: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: Hello everyone, myself Dr. Rajni Benivar. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive aur sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google aur Instagram aur social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज़ नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: Doctor calling.

0: 99.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर है। मैंने थोड़ा सा जब आपके बारे में रिसर्च करा या आपके बारे में पढ़ा, आप बीइंग अ मदर, आप मदर हैं उसके बाद आप ट्रैवल इंडस्ट्री प्लस फिटनेस, तो कितना ये मुश्किल हो जाता है कि फैमिली के साथ ये दोनों चीज़ें भी बैलेंस करनी है, ये आपका स्टार्टअप है इसे भी टाइम देना है प्लस फैमिली या जो चाइल्ड्स हैं उन्हें भी उतना टाइम देना है।
1: देखिए मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था, जब सिचुएशन नॉर्मल हुई मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अगर मैं अपना फिटनेस में शुरू कर दूंगी तो मैं वापस ट्रैवल इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी। हाँ। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में जाऊंगी ये मैंने सोचा था क्योंकि वो मेरा करियर
0: था
1: एंड मैंने स्टार्टिंग भी वहीं से की थी। अपॉर्चुनिटीज आने लगी तो मैंने वापस से ट्राई करना शुरू कर दिया ट्रैवल इंडस्ट्री में। मैंने कंपनी ज्वाइन की बाय द नेम ऑफ TNE ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस। तो बेसिकली हम इसमें कस्टमाइज करते हैं पैकेजेस एंड हम ग्रुप ट्रैवल्स भी कराते हैं। इधर मुझे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, मैं भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स लेके गई, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन था। और जहाँ तक फैमिली की बात है, फैमिली ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज फैमिली, और मैं यही सबको बोलना चाहूँगी कि अपनी फैमिली को आप देखो लेकिन अपने पैशन को भी फॉलो करो, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑटोमेटिकली आप खुश रहेंगे तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी।
0: 100% मैं यहीं पर, जैसे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल उसमें तो आपने एक्सप्लोर किया होगा, तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जो आप अभी तक एक्सप्लोर कर चुके हैं या लिस्ट में है कि यहाँ एक बार और एक्सप्लोर करने जाना है?
1: मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा तो नहीं करती क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑपरेशंस देखती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी कंपनी मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज देती है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में भेजती है, इवेंट्स मैनेज करने के लिए भेजती है। बट हाँ, मैं अभी एक ग्रुप लेके गई थी केरला फॉर 100 पीपल और अपना जो लिस्ट तो बहुत बड़ी है मैं यहाँ, बट हाँ मैं अभी एक ग्रुप लेके गई थी केरला फॉर 100 पीपल और अपना जो लिस्ट तो बहुत बड़ी है मैं यहाँ बताने गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हाँ, मेरे को अगर ट्रैवल करना है तो मुझे यूरोप ट्रैवल करना है एंड आई वांट टू ट्रैवल पेरिस एंड आई वांट टू ट्रैवल जापान आल्सो बिकॉज मेरी बड़ी डॉटर जो है शी इज फॉन्ड ऑफ जापान एंड कोरिया।
0: Okay.
1: तो हाँ ऑब्वियसली यहाँ जाना चाहूंगी मैं।
0: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

और अब सिनेमा का कैप्सूल की एक ऐसी बात जिसको सुनकर बॉलीवुड फैंस कहेंगे ओहो ये कॉम्बिनेशन तो इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं हैवान की। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक तरफ अक्षय कुमार दूसरी तरफ सैफ, और दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। मतलब नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। अक्षय और सैफ को साथ देखना अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग स्क्रीन पर्सनैलिटीज, एक तरफ अक्षय की एनर्जी और दूसरी तरफ सैफ का बिल्कुल अलग एक्टिंग स्टाइल और ऊपर से प्रियदर्शन। तो उम्मीद तो यही है कि फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। फिल्म को लेकर अभी से बस बनना शुरू हो गया है और फैंस खास तौर पर इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतने सालों बाद ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर कैसा जादू करेगा। तो जब बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, तब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब हैवान कितनी बड़ी धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस फिल्म पर नजर रखनी तो पड़ेगी। बॉस मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल सिर्फ रेडियो महारानी पर।

0: 99.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैम, आज की जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए अपने पैशन को फॉलो करना, एक प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग कई बार हो जाता है, तो आप अपनी लाइफ से अगर कोई गाइडेंस आज उन्हें देना चाहें।
1: देखिए, मैं मानती हूँ बहुत चैलेंजिंग होता है, आई नो, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी में रखना सेल्फिश नहीं होता है, बहुत जरूरी होता है। तो आप अपनी लाइफ को जैसे बैलेंस कर रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप बच्चे मैनेज कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए सब, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, अपने पैशन को जरूर फॉलो करो, वो बहुत जरूरी है। अपने पैशन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे ना, आप अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। तो जैसे मैंने लॉकडाउन में किया, मैंने नेगेटिव नहीं लिया उस चेंज को, मैंने पॉजिटिवली उसको फॉलो अप किया और मैंने अपना फिटनेस में भी करियर बनाया।
0: अभी फिटनेस का हम लोग जो चला रहे हैं वो कैसे सेशंस लेते हैं या कैसे हम अपना डे आउट प्लान करते हैं?
1: देखिए, मैं एरोबिक्स क्लासेस लेती हूँ, आई टेक क्लासेस ऑनलाइन ऑल्सो, आई टेक क्लासेस इन जिम ऑल्सो। हाँ, मेरी पूरा वर्किंग रहता है, लेकिन आई टेक इन मॉर्निंग बैचेस लेती हूँ मैं मॉर्निंग में, एंड मेरे लिए भी बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। तो
0: कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? ऑनलाइन क्लासेस पे
1: भी मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, फिटनेस विद आयुषी, इंस्टाग्राम पे हूँ मैं।
2: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।
3: लिखे जो

0: 106 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ नारी नंबर वन शो में। आयुषी विज जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। हमारे शो का नेम है नारी नंबर वन, नारी हर आगाज में आ गया। जैसे आप भी 100 लोगों का एक क्रू लेके जाना, प्लस लॉकडाउन के टाइम एक नई चीज को एक्सप्लोर करना कि मैं इसमें भी एक्सीड कर सकती हूँ, ट्रैवल बिजनेस, क्योंकि हमें मालूम है उस टाइम ट्रैवलिंग पूरी तरह से ही बंद था कि हमें कहीं नहीं जाना है, तो उस टाइम के वो चैलेंजेस और सारी चीजों को लेके। तो ऐसे बहुत सारी और नारी हैं जो बहुत अलग अलग फील्ड्स में या अलग अलग तरीके से चैलेंज करती हैं। तो जब वो चैलेंज उनके सामने आ रहा है तो उस टाइम उन्हें अपने माइंडसेट को या क्या एक ऐसी पॉजिटिव डोज खुद को देना चाहिए कि नहीं मैं ये करूंगी तो ये होगा, ऐसा कुछ पॉजिटिव जो आपके लिए मंत्रा रहा हो।
1: देखिए, लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक लेडी के लिए, घर मैनेज करना, बच्चे मैनेज करना, जॉब करना, घर के काम होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, उसको पॉसिबल बनाना ना सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रगल तो आता है और बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन आप वो चैलेंज को फेस करो, आप करो, आप मेहनत करो। थोड़ी सी जर्नी आपकी ज़रूर स्लो होगी, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता कुछ भी करने के लिए। तो आप यही करिए कि आप मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप अगर अपने आप पे विश्वास रखेंगे, सेल्फ बिलीव रखेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कुछ भी करने के लिए।
0: तो ये है आज हमारे साथ एक ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्लस फिटनेस एक्सपर्ट और फिटनेस कोच भी आप यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, आयुषी विज, जिनसे हम उनकी ही जर्नी के बारे में जान रहे हैं ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 69.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: Bollywood never stops.
6: Picture perfect music loaded.

0: watch more, log on to www.erosnow.com.
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: हाँ जी, लंच हो गया क्या? और काम का मूड है या आपका दिमाग अभी भी वीकेंड वाली वाइब सोच रहा है? और अगर आपकी दोपहर थोड़ी स्लो चल रही है ना, तो टेंशन मत लीजिए, पलक है ना। मैं हूँ पलक और आप सुन रहे हैं फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर, जहाँ अगले दो घंटे मिलेंगे सिनेमा के किस्से, स्टार्स की बातें, म्यूजिक, गॉसिप और एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज। तो काम करते रहिए, मूड को फ्रेश रखने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि 2 से 4 बजे का ये टाइम ना थोड़ा फिल्मी होने वाला है। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, एंजॉय कीजिए ये गाना और सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।

0: plan today.
1: Peace tomorrow.
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: कुछ लोग एज के साथ स्लो होते हैं और कुछ लोग एज को ही कंपटीशन समझ लेते हैं, और बॉलीवुड में इसका परफेक्ट एग्जांपल है अक्षय कुमार, आर वेरी ओन खिलाड़ी। आज अक्षय कुमार अपना 59th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जर्नी देखो तो बॉलीवुड में एंट्री से पहले मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर रहे हैं वो, और उसके बाद 1991 में सुगंध से एक्टिंग डेब्यू उन्होंने अपना करा था। इनकी स्टार्टिंग भले ही सिंपल थी, लेकिन एक्शन रोल्स ने उन्हें धीरे धीरे बॉलीवुड का एक्शन हीरो बना दिया, और फिर खिलाड़ी नाम तो जैसे उनकी परमानेंट आइडेंटिटी ही बन चुका है। फिटनेस, डिसिप्लिन और रूटीन के लिए अक्षय कुमार का नाम वैसे भी काफी फेमस है, मतलब 59 के हो गए हैं, लेकिन एनर्जी अभी भी फुल ऑन खिलाड़ी मोड है। तो अक्षय कुमार को मेरी तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे। और लिसनर्स, मेरा आपसे ये सवाल है कि अक्षय की ऐसी कौन सी मूवी है जिसे आप कितनी बार भी देख लो बोर नहीं होते? मुझे इसका जवाब कॉल या व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा। नंबर है 9654896896। मैं दोबारा बता देती हूँ, नंबर है 9654896896। चलिए, वक्त हो गया है अब एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
2: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google aur Instagram aur social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. To हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, क्या आपको भी ऐसी सोसाइटी मिली है जहाँ नेबर से ज्यादा उनकी लाइफ के अपडेट्स मिलते हैं? और वैसे भी हमें नेबर्स की जिंदगी में क्या चल रहा है ना, इसको जानने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो बस समझ लीजिए, चुंबक की दुनिया कुछ ऐसी ही है। नेटफ्लिक्स पर आ रही है हिंदी कॉमेडी सीरीज चुंबक, जिसका कनेक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। और इसको क्रिएट किया है आतिश कपाड़िया और जेडी मजीतिया ने। हाँ हाँ, वही शराबी वर्सेस शराबी और खिचड़ी वाली जोड़ी। और स्टोरी है एक मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली 5 नेबरिंग फैमिलीज की, जिनकी लाइफ्स अलग अलग चल रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ना सबकी कहानियां एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होती है कि फिर यहाँ आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, फैमिली ड्रामा भी, और वो टिपिकल नेबर वाली क्यूरियोसिटी तो बोनस में है भाई, वो आपको हर दूसरे सीन में देखने को मिलेगी। और इसकी कास्ट में है नीना गुप्ता, देविन भुजानी, अर्जुन बिजलानी, हेली शाह, अमायरा दस्तूर और सुमित व्यास। और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर आपको कल देखने को मिलेगी। जी हाँ, यानी कि 10th of September को ये नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हो रही है। तो अगर आपको हैवी ड्रामा से ब्रेक चाहिए और कुछ लाइट फील गुड और फैमिली वाली कॉमेडी देखनी है ना, तो इसे वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
2: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है, और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूं गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this.

0: तभी याद है तुम कहा करते थे कि सफर शुरू होने से पहले तुम सफर के मालिक होते हो, मगर जब सफर शुरू होता है तो सफर ही मालिक हो जाता है।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: हाँ जी फरीदाबाद वासियों, रनिंग शूज रेडी है क्या? क्योंकि अब सिर्फ रन नहीं, एक पूरा फिटनेस मोमेंट आने वाला है। 27 सितंबर को सूरज कुंड मेला ग्राउंड्स में होने जा रही है फरीदाबाद हाफ मैराथन, और इसमें अब तक 1,00,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और इसमें आपके पास काफी ऑप्शंस हैं। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन है, 10 किलोमीटर का टाइम्ड रन है और 5 किलोमीटर की फन रन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, विनर्स के लिए रखी गई है लगभग 10,00,000 रुपए की प्राइज मनी, और इसमें हिस्सा लेने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं फरीदाबाद हाफ मैराथन .in पर जाके। तो अगर रनिंग आपका पैशन है या बस आपको फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपके लिए एक साइन है, इसे इग्नोर मत करिए प्लीज। तो चलिए 27 सितंबर को मिलते हैं सूरज कुंड मेला ग्राउंड्स में। तब तक के लिए ये गाना एंजॉय कीजिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

हाँ जी, फरीदाबाद की बात तो बहुत कर ली, चलिए अब थोड़ा सा बाहर निकल कर देखते हैं और ये देखते हैं कि आजकल सोशल से आप हमें लेकर कहाँ जाते हैं। पहली बात तो ना यार, जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हो ना तो एक डर साथ में खरीद लेते हो, और वो डर ये है कि अगर इस कार को कुछ हो गया तो अपना क्या होगा। जिंदगी की ना, जिंदगी की सारी कमाई हमने इस पर लगा दी है, और जब वो घर में आती है ना तो घर का एक नया मेंबर होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई देखिए, जब भी कभी आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना नई, तो सिक्योरिटी भी भाई VIP होनी चाहिए, और अगर अब तक ये VIP सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता था ना तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर फरीदाबाद से सीधा चलते हैं हम बिहार। बिहार की एक फैमिली ने पहले स्कॉर्पियो खरीदे, और जब उन्हें लगा ना कि भाई गाड़ी तो बहुत ज्यादा महंगी है, अब इसे पार्क कहाँ करें। अब आप सोच के जरूर देखिएगा कि भाई कहाँ पार्क किया होगा, पार्किंग में? ना ना ना, पार्किंग में पार्क नहीं किया इन्होंने, इस कार को कर दिया अपने घर की छत पे पार्क। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर छत तक कार कैसे गई, तो भाई क्रेन आई थी, क्रेन ने स्कॉर्पियो को उठाया, सीधा टेरेस पर चढ़ाया और पार्किंग को कर दिया बंद, लॉक्ड, यानी कि ना एक कार नीचे आ सकती है और ना ही कोई चोर इस कार तक जा सकता है। तो देखिए, अगर आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में कहीं भी पार्किंग की प्रॉब्लम थी ना, तो भाई ये वाला आइडिया जरूर अपना सकते हैं आप। इससे पता क्या होगा, इससे आपकी कार भी सेफ रहेगी और ना जब चाहे तब आप अपनी कार को जाकर देख सकते हैं, उसे निहार सकते हैं, आफ्टर ऑल पैसा जो खर्च किया है ना। तो भाई देखिए, ये सोशल स्यापन बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर। जब लोगों ने ये देखा ना तो लोग ना बस यही सोच रहे हैं कि भाई साहब ये कार फिर खरीदी ही क्यों है जब आप इस कार को चलाएंगे ही नहीं। तो भाई देखिए, शौक बड़े होने जरूरी है, लेकिन उन शौक के लिए ना इतना परेशान होना जरूरी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर
5: Where Bollywood never stops.
6: Picture perfect music loaded.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, और आज ऐसा ही एक गाना चर्चा में चल रहा है जो मिर्जापुर की बंदूकों और गोलियों वाली दुनिया के बीच ना प्यार का सबसे खूबसूरत चेहरा दिखाता है। और मैं बात कर रही हूँ वारो फॉरएवर की। मिर्जापुर द मूवी का ये नया ट्रैक ना सीजन वन के रोमांटिक वारो का रीइमेजिन्ड वर्जन है। लेकिन सबसे पहले वारो का मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। वारो यानी किसी पर खुद को पूरी तरह वार देना, इतना कि सामने वाला आपकी लाइफ से भी बढ़कर हो जाए। और इस नए वर्जन में ओरिजिनल सिंगर रोमी के साथ जुड़ी है श्रेया घोषाल की आवाज, और म्यूजिक दिया है आनंद भास्कर ने, और लिरिक्स हैं गिनी दीवान के। और गाने की खूबसूरती ये है कि एक तरफ मिर्जापुर की दुनिया में हिंसा, पावर और कैओस है, और दूसरी तरफ ये गाना उस दुनिया के बीच सुकून और मोहब्बत की जगह बना देता है। मतलब मिर्जापुर से भले ही हर कोई अपना एम्पायर बचाने में लगा हो, लेकिन वारो में ना कोई अपना दिल बचाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए, इस गाने की मैंने बात कर दी है तो सुनाती हूँ आपको यही गाना और लौटूंगी कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: भाई 4 करोड़ की ड्रेस, इतने में तो इंसान घर गाड़ी और जिंदगी के कई सपने खरीदने की सोच ले, लेकिन यहाँ बात हो रही है एक आउटफिट की। अब आप देख रहे हो 4 करोड़ का आउटफिट। अमिताभ बच्चन की पोती नव्या नवेली नंदा अपने लेटेस्ट लुक को लेकर चर्चा में चल रही है काफी, और दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जो ड्रेस पहनी है ना वो गोल्ड से बनी है और उसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब सोचिए जरा, हम लोग कपड़े खरीदते वक्त पूछते हैं ना कि भैया इसमें कुछ डिस्काउंट हो जाता तो अच्छा होता, और इधर फैशन का हिसाब है गोल्ड कितना लगेगा। अब आप देख रहे हो, और वैसे भी नव्या नवेली का नाम फिल्मों से भी जुड़ता रहा है। कभी उनकी एक्टिंग और बॉलीवुड डेब्यू को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन उन्होंने एक्टिंग की बजाय बिजनेस और सोशल इनिशिएटिव की तरफ अपना रास्ता चुना। तो बॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना भले पूरा ना हुआ हो, लेकिन नव्या ने अपनी अलग पहचान बनाने का रास्ता जरूर चुन लिया है। फिलहाल वक्त हो गया एक गाने का, इस गाने को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी।

नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू डॉक्टर।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अगर आपको लगता है ना कि फैमिली के साथ बैठकर सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली फिल्में ही देखी जा सकती हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि पंजाबी सिनेमा एक और पिट से आपा लेकर आ रहा है। जी हाँ, नाम ही बता रहा है कि मामला सीधा साधा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। पंजाबी कॉमेडी मूवी पिट स्यापा का प्रीमियर होने जा रहा है 10 सितंबर को केबल वन OTT पर। और ये कॉमेडी और फैमिली ड्रामा बेस्ड है, यानी कि घर वालों के साथ बैठकर हंसने का पूरा इंतजाम है इस मूवी में। लेकिन साथ में फैमिली वाली सिचुएशंस और खूब सारा पंजाबी तड़का भी आपको देखने को मिलेगा। और फिल्म देखने के लिए ना आपको थिएटर तक जाने की जरूरत भी नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली केबल वन OTT पर स्ट्रीम होने जा रही है। तो अगर आपके घर भी ऐसे होता है ना कि छोटी सी बात को एक बड़ा सियापा बना दिया जाता है, तो ये फिल्म शायद आपको थोड़ी ज्यादा रिलेटेबल लगने वाली है। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगे। और ऑनेस्टली, ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

0: मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो बिया
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: तो बस आज के फिल्मी फ्लेवर को करते हैं यहीं शटर डाउन। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी आपसे कि फिल्में हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है ना, जहां कभी हम हीरो बन जाते हैं, कभी विलेन और कभी बस साइड कैरेक्टर ही बन के रह जाते हैं। कभी कोई डायलॉग दिल पर लग जाता है, कभी कोई गाना पुरानी यादों में ले जाता है, और कभी कोई फिल्म बस हमें 2-2.5 घंटे के लिए ही सही लेकिन हमारी दुनिया से निकाल कर ना किसी और दुनिया में ही ले जाती है। और असली मैजिक यही है ना यार, फिल्म खत्म होती है, क्रेडिट्स आ जाते हैं, लेकिन कहानी हमारे अंदर ही चलती रहती है। तो इसी के साथ अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना, आज जाऊंगी तभी तो कल फिर आऊंगी। कल फिर मिलूंगी इसी समय इसी जगह नई फिल्मी किस्से और एंटरटेनमेंट के नए तड़के के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ये गाना और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी। बाय बाय, टेक केयर।

अंजलि। हाँ जी, फरीदाबाद की बात तो बहुत करी, चलिए अब थोड़ा सा बाहर निकल कर देखते हैं और यही देखते हैं कि आजकल सोशल से आप हमें लेकर कहाँ जाते हैं। पहली बात तो ना यार, जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हो ना तो एक डर साथ में खरीद लेते हो, और वो डर ये है कि अगर इस कार को कुछ हो गया तो अपना क्या होगा, जिंदगी की ना जिंदगी की सारी कमाई हमने इस पर लगा दी है। और जब वो घर में आती है ना तो घर का एक नया मेंबर होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई देखिए, जब भी कभी आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना नई, तो सिक्योरिटी भी भाई वीआईपी होनी चाहिए। और अगर अब तक ये वीआईपी सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता था ना, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर फरीदाबाद से सीधा चलते हैं हम बिहार। बिहार की एक फैमिली ने पहले स्कॉर्पियो खरीदे, और जब उन्हें लगा ना कि भाई गाड़ी तो बहुत ज्यादा महंगी है, अब इसे पार्क कहाँ करें। अब आप सोच के जरूर देखिएगा कि भाई कहाँ पार्क किया होगा, पार्किंग में? ना ना ना, पार्किंग में पार्क नहीं किया इन्होंने, इस कार को कर दिया अपने घर की छत पे पार्क। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर छत तक कार कैसे गई? तो भाई क्रेन आई थी, क्रेन ने स्कॉर्पियो को उठाया, सीधा टेरेस पर चढ़ाया और पार्किंग को कर दिया बंद, लॉक्ड, यानी कि ना एक कार नीचे आ सकती है और ना ही कोई चोर इस कार तक जा सकता है। तो देखिए, अगर आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में कहीं भी पार्किंग की प्रॉब्लम थी ना, तो भाई ये वाला आइडिया जरूर अपना सकते हैं आप। इससे पता है क्या होगा, इससे आपकी कार भी सेफ रहेगी और ना जब चाहे तब आप अपनी कार को जाकर देख सकते हैं, उसे निहार सकते हैं, आफ्टर ऑल पैसा जो खर्च किया है ना। तो भाई देखिए, ये सोशल सियापा ना बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर। जब लोगों ने ये देखा ना, तो लोग ना बस यही सोच रहे हैं कि भाई साहब, ये कार फिर खरीदी ही क्यों है जब आप इस कार को चलाएंगे ही नहीं। तो भाई देखिए, शौक बड़े होने जरूरी है, लेकिन उन शौक के लिए ना इतना परेशान होना जरूरी है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: बड़ा सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: अजी लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: तुम्हारे हैं।
1: मेरी

0: जरा आप मुस्कुराइए, जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पर अब लोग कुछ ज्यादा ही निडर हो गए हैं? मतलब कुछ भी बोल देते हैं, किसी को भी गाली दे देते हैं, किसी को भी कुछ भी कमेंट कर देते हैं और सोचते हैं कि हम तो बच जाएंगे, हमारा तो क्या ही हो जाएगा।
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
1: आरजे गौरव आप सभी के साथ, रेडियो महारानी 89.6 पर स्वागत है आप सभी का। शो चल रहा है HR 896, शुरुआत हो चुकी है। अगले 4 घंटे के लिए मैं आ गया हूँ आप सभी के साथ। खूब सारी बातें होने वाली है, मस्ती भी होगी, गाने भी चलेंगे और इसी के साथ साथ जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ वो एक तरह से रियलिटी बन चुकी है। देखो, एक इंसान को पता है कि मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। सोशल मीडिया पर आते हैं, कुछ ना कुछ फालतू बकवास करके चले जाते हैं, गाली दे देते हैं या फिर कुछ बुली कर देते हैं। ऑनलाइन बुलिंग इज अ क्राइम, सीरियस क्राइम है ये, प्लीज मत कीजिए। और ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ अब आप लोग FIR कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको जाना है cybercrime.gov.in और वहां पर पोर्टल पर जाके आपको अपना नंबर डालना है। सबसे पहले कंप्लेंट्स का फॉर्मेट पूछेगा, तो अदर कंप्लेंट्स में जाना है आपको। वहां पर आपका नंबर पूछेगा, नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे, फिर उसके बाद आपको सारे के सारी चीज़ें डालनी है, जैसे कि स्क्रीनशॉट और जो आपको बोला गया उसका लिंक और बकायदा उसके साथ साथ क्या क्या एग्जैक्टली बोला गया, क्या आपकी परेशानी है, वो आप टाइप करके देंगे। तो फिर उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, जिससे आप लोग ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट कहां पर पहुंची है। चलिए, ये चीज़ तो बाद में करेंगे, मगर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी का स्वागत है। अगले 4 घंटों के लिए मैं आप सभी के साथ हूँ एंड आज खूब सारी बातें होने वाली है, साइबर क्राइम से रिलेटेड भी बातें होगी। और अमेरिका में 1 घंटे में मेहंदी लगा के कितने रुपए कमा सकते होगा कोई, सोचो जरा। करेंगे क्योंकि इसके बारे में बात, और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया मुझे समझ आया, तो इसके बारे में करेंगे बात मगर थोड़ी देर बाद। तो बहुत सारे बातें होंगी, बहुत सारे गाने चलेंगे, उन्हीं में से फरीदाबाद के लड़के की आवाज में चला रहा हूँ इस गाने को। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूँ आरजे गौरव आप सभी के।

0: और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुकी होंगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगी। और ऑनेस्टली ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है, मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका में एक घंटे में मेहंदी लगाकर, हाँ वो हाथों पे है ना, मेहंदी लगाकर आप लोग कितने रुपए कमा सकते हो?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव है आप सभी के साथ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। बहुत टाइम बाद ये नाम ले रहा हूँ ना, आरजे का गौरव, माफ कीजिए, रेडियो का गौरव। और इसी के साथ साथ जो हम लोग बात कर रहे थे वो यही है कि एक घंटा मेहंदी लगाकर कितने कमा सकते हैं। अमेरिका में एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका नाम है प्रियंका जैन। ये लड़की अमेरिका में रह रही है और पार्ट टाइम मेहंदी आर्टिस्ट का काम कर रही है। एक घंटे के सिर्फ और सिर्फ $100 ले रही है। पता कितने रुपए होते हैं? 9 से 10 हज़ार रुपये एक घंटे में कमाती है। और कह रही मैं 10 घंटे काम तो कर ही लेती हूँ। शादियों में या फिर दुल्हन में, शादी में दुल्हन के लिए मेहंदी का काम भी करती है और वैसे भी शादियों में भी मेहंदी का काम कर लेती है। कह रही कि मेहंदी लगाकर अगर मैं 10 घंटे लगातार काम कर लूँ तो मैं 1 लाख रुपए तक कमा लेती हूँ। हैट्स ऑफ है यार ऐसी मेहनत को, ऐसे जज्बे को, क्योंकि अमेरिका में घर वालों ने पढ़ने भेजा था मगर वहाँ पर पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर इसने काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद अभी पार्ट टाइम मेहंदी लगाने वाला काम करिए और बुरा तो नहीं है यार ये काम। मतलब 10 घंटे काम करके अगर 1 लाख रुपये कमा सकते हैं तो फिर महीने में कितने ही कमा लेंगे, सोचो ज़रा इसके बारे में। क्योंकि देखो ऐसा बिजनेस आइडिया कभी किसी ने सोचा नहीं था। और मैं तो ये बोल रहा हूँ अगर कोई मुझे किसी और देश के लिए भी बोलेगा ना, मतलब जो जहाँ के मनी वैल्यू अच्छी है, जैसे कि इंडिया का पैसा कितना है, इंडिया का रुपया कितना है, अगर अमेरिका जाएगा तो 90 से 95 रुपये, और वहीं पर अगर यूरोप चले जाए तो यूरोप में 100 रुपये से भी ऊपर होगा, तो वहाँ पर भी मेहंदी लगाने का ये पार्ट टाइम वाला काम तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वहाँ के लोगों को बड़ा फैसिनेट करता है ये सब चीज़ें। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, अगर कल को आपको जाना हो कहीं पर तो मेहंदी की 2-4 कीप ले जाना और वहाँ जाके मेहंदी लगा देना, थोड़े बहुत तो पैसे आ ही जाएंगे। चलिए ऐसी बातें तो होती रहेंगी। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को। मैं हूँ गौरव आपके साथ।

के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं, आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

क्या आसमान में, मौसम में आपको भी त्योहारों की सुगंध आनी शुरू हुई है कि नहीं? मुझे तो आने लग गई है। सुबह और शाम को ये आसमान में, मौसम में ये सुगंध मजा ही दे देती है। आप लोगों को भी आ जाएगी, जरा ध्यान देना। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो का गौरव कहते हैं प्यार से, और मैं जो बात कर रहा हूँ, त्योहारों की खुशबू आसमान में आ गई है, और आसमान के साथ साथ मार्केट में भी आ गई है, क्योंकि मार्केट में भीड़ दिखनी शुरू हो चुकी है। लोगों ने अपने घरों पर पेंट करवाना शुरू कर दिया है, दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने पूरे साल भर घर में सफाई नहीं करी, उनको भी काम पे लगा दिया जा रहा है, क्योंकि दिवाली मात्र डेढ़ महीने बाद, डेढ़ भी नहीं मैं बोलूँगा, दो महीने बाद है। हाँ, दो महीने बाद है। अब देखो, सितंबर आधा निकल चुका है, और एग्जैक्ट बोलें तो 9 नवंबर को दिवाली, आज है 9 सितंबर। हाँ, दो महीने तो है, तो बस ऐसे ही टाइम बीतता चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब दिवाली आई और कब चलेगी। खैर, जो मैं बात कर रहा हूँ कि त्योहारों की खुशबू आसमान में है, तो त्यौहार नज़दीक है, मार्केट में भीड़ बढ़ी है, तो भीड़ के साथ साथ एक और चीज़ बढ़ी है, उसे कहते हैं सड़कों का भीड़, यानी कि सड़कों का ट्रैफिक। मेन रोड पे भी ट्रैफिक है, अंदर वाली रोड पे भी ट्रैफिक है, NIT1 में जाओ वहाँ ट्रैफिक है, ओल्ड की मार्केट में जाओ वहाँ ट्रैफिक है, सेक्टर 15 की मार्केट हो या फिर सेक्टर 10 की मार्केट हो, हर जगह आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा। और फिर इसके अलावा मथुरा रोड की अगर बात करें, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा वाला ट्रैफिक मिल जाता है। तो अब ये त्योहारों में ना समझ नहीं आता कि शॉपिंग करे तो करे कहाँ से, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। तो आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर शॉपिंग करनी है त्योहारों की, अब भी कर लो, क्योंकि अभी उतनी भीड़ नहीं हुई जितनी आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजते रहेंगे।

0: बार का।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: पूरे देश में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और जो मैंने अभी बात बोली वो रियलिटी है। अब आप बोलोगे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है कंट्रोल, मतलब पुलिस वाले अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं। बट ये जो साइबर क्रिमिनल्स है ना, ये ना कुछ ज़्यादा ही चालाक हैं, वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मैं एक इंसान पकड़ा जाता है तो दूसरा इंसान सोचता है उसने गलती करी होगी, मैं थोड़ी ना पकड़ा जाऊँगा। और ऐसे ही बहुत सारे लोग और भी जुड़ते जा रहे हैं इन साइबर क्रिमिनल्स के साथ साथ। और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग आपको ठगने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं ये पूरे देश की बात करूँ ना तो उसमें फरीदाबाद भी आता है। फरीदाबाद में भी साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। AI का इस्तेमाल कर रहे हैं वॉइस क्लोनिंग से। चलो वो एक बार को आप लोग कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा बेटा कौन कौन से वर्ड्स एग्जैक्टली यूज़ करता है या फिर कौन कौन से वर्ड्स मेरे फैमिली मेम्बर्स यूज़ करते हैं, वो आप पकड़ लोगे। बट दूसरी चीज़ है, आप लोगों को सामने से कॉल आएगा, हो सकता है वो AI का इस्तेमाल करके हाँ आपके किसी चाहने वाले की शक्ल भी दिखा दें और कुछ भी कर सकते हैं। खैर इसके अलावा और भी चीज़ें हो रही हैं आजकल बिना AI की मदद से भी ये लोग कर रहे हैं, जो कि आपको कॉल करेंगे और आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाएंगे कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, ये वो बहुत सारी बातें बोल देंगे। और हो सकता है कि आपके साथ कॉल पर भी धोखाधड़ी हो जाए, यानी कि आपके पास कॉल आएगी और आपको बोला जाएगा कि आपका फ़ोन नंबर अपग्रेड किया जा रहा है, आपके पास जो बैक से कॉल आ रही है उसको उठाओ और मर्ज कर दो कॉल। नहीं करना है आपको, OTP ले लेंगे आपके फ़ोन का और फिर उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसी सभी चीज़ों से बच कर रहे, किसी भी अननोन कॉलर का फ़ोन मत उठाइए, और उठा भी रहे तो उसको कुछ भी शेयर मत कीजिए। बैंक का अकाउंट नंबर, OTP, CVV कुछ भी शेयर नहीं करना है। और अभी फ़िलहाल रेडियो महारानी पर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है इस गाने के साथ। सुनिए इस गाने को, मैं हूँ गौरव आपके साथ और कितना प्यारा गाना है ना, चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप आपको
1: बताइएगा।
2: क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो फिर

एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप सभी से कि जब भी रात को सोने जाते हो तो क्या आराम से चैन की नींद आ जाती है क्या? नहीं नहीं, मैं गद्दे की बात कर रहा हूँ। आपका जो गद्दा है जिसपे आप सोते हैं, जो मैट्रेस है, क्या वो आरामदायक है? कितने का ही ले लिया होगा आपने? 10,000, 20,000, 40,000? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि 7 करोड़ का भी गद्दा आ रहा है? 7 करोड़! उसके लिए मुझे लगता है केबीसी में जाना पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं गौरव, आपके साथ। रेडियो का गौरव कहते हैं दुनिया का सबसे महंगा गद्दा। अगर इसकी जिद कोई कर दे, सोचो घर वालों से कितना पिटेगा। मतलब मैं अगर अपने घर वालों से जिद करूं कि एक महंगा सा गद्दा ले दो मुझे, तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। और अगर मैं अपने पैसों से, खुद से, मैं अपनी सैलरी से गद्दा ले आऊं महंगा वाला, तो भी मैं सुनने वाला हूं कि क्या ज़रूरत थी, ये और वो, बहुत सारी बातें सुनाएंगे। खैर, आप सभी को बता दूं, दुनिया का सबसे महंगा गद्दा, उसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है और उसे बनाने में टोटल 25 दिन लगते हैं। अब ऐसा क्या है उस गद्दे में? ये गद्दा स्वीडन की हेस्टेंस कंपनी बनाती है। और बता दूं, बड़ा मॉडल इसका डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत डिफरेंट चीज़ें डलती है। इसके अंदर डलता है कॉटन, इसके अलावा डलती है ऊन, उसके अलावा डलती है फ्लेक्स। मगर जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डलती है इसके अंदर, वो है घोड़े की पूंछ के बाल। अब ये सबसे ज़्यादा महंगे आते हैं, इसीलिए ये गद्दा इतना महंगा है, यानी कि 7 करोड़ का ये गद्दा है। और इस पे सोने में तो मज़ा सही आ जाता होगा, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो देखी थी। एक इंसान ने वीडियो बनाई थी, वर्स्ट मैट्रेस टू बेस्ट मैट्रेस इन दिस वर्ल्ड, और उस वीडियो में ये 7 करोड़ के गद्दे में भी लेटा था। और आपको बता दूँ, ये गद्दा ना ब्लैक कलर का बनता है और खुद हाथों से बनाया जाता है। मतलब पूरी तरह से इसमें ऊन और रुई और उसके साथ साथ घोड़े की पूंछ के बाल, ये सारी चीज़ें ना हाथों से डाली जाती है, पिरोई जाती है एक तरह से कह सकते हैं। और ये गद्दा काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है, ऐसा इनका मानना है। बट मुझे तो लगता था कुछ ज़मीन पर एक चटाई बिछाओ, उस पर लेट जाओ, उससे ज़्यादा आरामदायक चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती, है कि नहीं? चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि नींद तो मुझे भी आ रही है, मगर आप लोगों के लिए गाना चला रहा हूँ। सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी 89.6 पर।

और अब सिनेमा का कैप्सूल की एक ऐसी बात जिसको सुनकर बॉलीवुड फैंस कहेंगे ओहो ये कॉम्बिनेशन तो इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं हैवान की। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक तरफ अक्षय कुमार दूसरी तरफ सैफ और दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। मतलब नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। अक्षय और सैफ को साथ देखना अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग स्क्रीन पर्सनैलिटीज है। एक तरफ अक्षय की एनर्जी और दूसरी तरफ सैफ का बिल्कुल अलग एक्टिंग स्टाइल और ऊपर से प्रियदर्शन। तो उम्मीद तो यही है कि फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। फिल्म को लेकर अभी से बस बनना शुरू हो गया है और फैंस खास तौर पर इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतने सालों बाद ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर कैसा जादू करेगा। तो जब बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना तब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। अब हैवान कितनी बड़ी धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस फिल्म पर नजर रखनी तो पड़ेगी। बॉस मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल सिर्फ रेडियो महारानी पर।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या कभी ऐसा हुआ है आप अपने आप को सपने में खेलते हुए देख रहे हो, मतलब क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, हो सकता है घर बैठे बैठे PS5 पर GTA 5 खेल रहे हो। आरजे गौरव का कहना है कि अगर सपने में आप अपने आप को खेलते हुए देखते हो तो कामयाबी मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। यार जगह का कहना नहीं है, बेसिकली ये स्वप्न शास्त्र ड्रीम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इसे, ड्रीम एस्ट्रोलॉजी। और इसमें देखो ये पॉसिबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट हाँ मैं तो चाहूँगा कि आपकी कामयाबी भी हो, आपकी तरक्की भी हो। और हो सकता है अगर आप सपने में अपने आप को खेलते हुए देख रहे हैं तो अचानक से आपको लाभ मिल सकता है। वो कहते ना अचानक से एकदम से गेंस आ जाती हैं लाइफ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें, पैसे बढ़ गए एकदम से आपकी, या फिर तरक्की मिल गई आपको, सम्मान मिलने लग गया आपको। और इसके अलावा अगर आप बॉल से खेल रहे हैं तो इसको तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोई नई जिम्मेदारी या फिर तरक्की आने वाली है आपकी लाइफ में। अब इसके लिए ना कुछ सपनों के साइकोलॉजी से भी रिलेटेड टर्म्स होती हैं। अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर आप अपने आप को खेलते हुए देख रहे हो तो मतलब अब आप स्ट्रेस से दूर हो, बहुत ज़्यादा सुकून है आपकी लाइफ में, और जल्दी ही आपकी लाइफ से स्ट्रेस से दूर होने वाला है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिफ्रेशमेंट देने के लिए ऐसे सपने दिखाता है, या फिर हो सकता है आपके अंदर का जो बचपना है, इनर चाइल्ड है जो आपका, वो भी जिंदा दिल है, अभी भी मतलब जागा हुआ है और ज़िंदगी को खुलकर आप जीना चाहते हैं, यह भी दिखा सकता है। तो आपको भी ऐसे सपने आते होंगे, तो ऐसे ही डेली सपनों को डिकोड करते हैं हम लोग। अपने सपने जरूर लिखा कीजिए, हर रोज बोलता हूँ, पर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर गानों को एंजॉय कीजिए।

0: पता नहीं, मैं तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

आप लोगों ने बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट देखी थी? मैंने देखी थी, और फिर उसके बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि इसमें हमारी इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम का नाम क्यों है? मैरी कॉम क्यों है इसमें? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी के साथ, रेडियो महारानी 89.6 पर। मुझे मैरी कॉम के लिए चिंता नहीं है, मुझे चिंता उन लोगों के लिए जो मैरी कॉम से लड़ाई करेंगे इस घर के अंदर। सोचो एक मुक्का पड़ गया तो क्या होगा, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसा मैरी कॉम का कहना है, और ये रियलिटी भी है। हेल्थ इज वेल्थ मैं अक्सर आप सभी को बताता हूँ। खैर अगर मैरी कॉम की बात करें तो एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका भी, जो बिग बॉस के घर के अंदर से ही है, और वो कह रही हैं कि मेरी एज 42 है, और आज भी जो नए नए जवान जवान लड़के हैं, लौंडे हैं या फिर लड़कियाँ भी हैं, तो उन लोगों को भी हराने का दम रखती हूँ। कहती मुझे छू भी नहीं पाएंगे ट्रेनिंग में, एक बार आ जाए मतलब स्पारिंग सेशन कहते हैं जैसे, उसमें टच भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। अब देखो वो अपना दिन की शुरुआत कैसे करती है, एक घंटे के अंदर 10 किलोमीटर रनिंग वो करती ही करती हैं, और दिन में 2 से 3 सेशन ट्रेनिंग भी करती हैं। इसके अलावा वो बॉयल्ड खाना खाती हैं, नॉन स्पाइसी खाना खाती है, वेज एंड नॉन वेज दोनों खाती है, मणिपुरी मील्स कह सकते हो आप उसे। और इसके अलावा स्किपिंग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, बैडमिंटन पसंद है, और रात को 10:30 बजते ही वो सो जाती हैं। और अगर बात करें चीट मील की, हाँ चीट मील किसको नहीं पसंद, मतलब जितने भी लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर जितने भी लोग वर्कआउट करते हैं, सबको चीट मील या फिर चीट डे पसंद होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ चीट डे नहीं होता, चीट मील होता है। और मैरी कॉम की अगर बात करें तो उनकी चीट मील है सबसे फेवरेट उनकी जलेबी। जलेबी किसको नहीं पसंद, साथ में रबड़ी और मज़ा से आ जाता है कि नहीं। तो ये तो थी मैरी कॉम की लाइफ, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि देखो हेल्थ इज वेल्थ, और ये रियलिटी भी है, मुझे तो ऐसी लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा। तो ये तो आज बात होगी मैरी कॉम की, बट अब वापस आकर करेंगे बात बिग बॉस के घर के बारे में, क्योंकि करनी तो बनती है ना बात। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, ब्राउन मुंडे आप सभी के लिए गाना, मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा।

0: रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ।
1: पता है क्या,
0: बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस।
1: ये तो याद होगा सभी को। और वाप पे जाना नहीं। और अभी मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ओलंपिक मेडलिस्ट एंड बॉक्सर MC मैरी कॉम इस कंटेस्टेंट की लिस्ट में। बिग बॉस की हम लोग बात कर रहे हैं। और बिग बॉस के घर में इस बार कौन कौन आया है, चलो मैं बात करता हूँ सबकी। ठीक है, माही विज जिनको हम सभी जानते हैं, कनिका मान ये कौन है मुझे समझ नहीं आया, अम्रपाली दुबे जो कि एक्ट्रेस हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, ईशा रिक्की आप सभी को पता है अभी इनका नाम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बादशाह बाजी के साथ थी ये। और इसके बाद अरिश्वा खान इन्फ्लुएंसर हैं ये, अमन गांधी जो कि एक एक्टर हैं और एक सिंगर भी आए हैं इसमें, काजी अहमद तौकीर। अब ये गुरुकुल में जीते थे, फेम गुरुकुल नाम का एक शो था उसमें जीते थे। इसके अलावा आसिफ खान एक्टर हैं, उदिति सिंह मॉडल है, रीति तिवारी नॉर्मल कंटेस्टेंट, और इसके साथ साथ लवप्रीत कौर जो अभी रिसेंटली जिन्होंने रिया हीर को हराकर एंट्री ली है। उसके बाद तन्मय सिंह स्काउट ओपी गेमर है, स्टीमर है। अब इनके अलावा तीन और बंदे हैं, देखो मैं आप सभी को बता दूं, रोहित खान और साथ में हर्ष मचारे। ये लड़का रैपर है और ये मुझे पता नहीं क्यों वाइब दे रहा था MC Stan वाली, लोकल MC Stan। वैसे MC Stan कौन सा कुछ खास है मुझे नहीं पसंद, आप लोगों को भी नहीं पसंद होगा, किसको पसंद आता है मतलब। ठीक है चलो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम लोग अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते हैं और उस पर गाने चलाता हूँ आप लोगों के लिए। सुनिए इस गाने को, मिक्स मैशअप ये गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप बोलना, आपको बताइएगा।
1: आप नहीं रुला गया तो?
2: सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो क्या।

0: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।
1: सिनेमा का कैप्सूल। अब थोड़ा हटके चलते हैं, क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली

वाइब है और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात ये भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहाँ जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सनम का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

0: वीकनेस को एक्सक्यूज बनाना है या स्ट्रेंथ? अगर आंसर है स्ट्रेंथ, तो वेलकम टू द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग। यहाँ सिर्फ पंचेस और किक्स नहीं सीखते, यहाँ डिसिप्लिन बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है और फाइटर्स बनते हैं। किकबॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, कराटे, ताइक्वांडो और सेल्फ डिफेंस, ट्रेन करो, खुद को चैलेंज करो और बनो अपना स्ट्रॉन्गर वर्जन। द वॉरियर्स क्लब एंड किकबॉक्सिंग, स्पेशल फीमेल ट्रेनर्स फैसिलिटी एंड किड्स फ्रेंडली। विजिट अस एट सेक्टर 14, फरीदाबाद। कॉल नाउ 8766220036।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हक्के।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप हमको
1: बताइएगा।
2: क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो फिर हम

अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही आप लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे, कोई इमोशनल ब्लैकमेल करता था तो फिर कोई और अलग तरीके से ब्लैकमेल करता था। बट क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि अब AI भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और आरजे गौरव ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा है, ये बात मैंने नहीं बोली है, चीफ साइंटिस्ट OpenAI के चीफ साइंटिस्ट हैं जेकब पचौकी, इन्होंने खुद ने बोला है कि AI से सावधान रहने की ज़रूरत है हम ह्यूमंस को। देखो पहले ना ऐसी रेडियो आया था तब लोग बोल रहे थे रेडियो आ गया अब तो चली जाएगी लोगों की जॉब, टीवी आ गया लॉब जॉब चली जाएगी, रेडियो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इंटरनेट आ गया तो लोग और परेशान हो गए, अरे इंटरनेट आ गया। फिर अब AI आया तो AI आने के बाद लोग परेशान हो रहे हैं। बट देखो ये थोड़ा सा सच में है कि इंसानों को धोखा दे सकता है। उनका साइंटिस्ट का ये कहना है कि देखो जो नियर फ्यूचर में AI इंसानों को धोखा दे सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है या फिर उनके साथ मोल भाव करने में भी सक्षम हो सकता है। उनका सिंपल सा कहना है कि भविष्य में AI इतना डेवलप हो जाएगा कि वो इंटरनेशनल जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होगी उनमें बात कर सकेगा, दुनिया भर की सरकारों से बात कर सकेगा और दुनिया भर की सरकारों की एक प्रायोरिटी भी बन जाएगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अभी इस टाइम जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं ना उन सबको एक प्रायोरिटी के बेसिस पर सारी वर्ल्ड की मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स को ये देखना चाहिए कि हाँ AI कभी भी हाथ से आगे ना निकले। क्योंकि अभी रिसेंटली AI बॉट्स की AI रोबोट्स की वीडियोस आ रही है जहाँ पर वो इंसानों पर हमला करने के लिए उतावले हो रहे, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आया। अभी एक वीडियो आई थी जहाँ रेस्टोरेंट में एक AI रोबोट लगाया गया था, वहाँ पर एक इंसान ने ऐसी मजाक में धक्का दे दिया तो वो फाइटिंग मोड में आ गया और उसने जो किक्स और मुक्के मारे हैं मतलब लगे नहीं वो अलग बात है, बट हाँ मारने की तो पूरी कोशिश थी। तो ये सब चीज़ें हो रही है AI के साथ। और चीफ साइंटिस्ट जो हैं OpenAI के, उन्होंने

यही बोला कि हमें तो सुनिश्चित करना होगा कि देखो जो ह्यूमन फ्यूचर है वो इस पर AI पर अपना नियंत्रण बनाए रखे। और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते रहिए, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने बजते रहेंगे मेरे दोस्त।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मौसम तो कुछ ऐसा है कि हर जगह मौसम सुहाना सुहाना सा है। हफ्ते का वो वाला दिन जब हम लोग बड़े ही उत्सुकता के साथ बैठे होते हैं कि दो दिन और ऑफिस आना है, फिर उदास भी हो जाते हैं, अरे दो दिन और ऑफिस आना है। वेंसडे की शाम है, गौरव मेरा नाम है। बहुत देर से आप लोगों के साथ बातें कर रहा था और मैं सोच रहा था थोड़ी बहुत बातें मौसम के बारे में भी कर ली जाए, है कि नहीं। रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। मौसम भले ही 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया हो आज, मतलब टेम्परेचर 36 डिग्री पहुंच गया था, बट इट वॉज फीलिंग एज ए 40 डिग्री। और दूसरी चीज़ एक और मैं बोलूँगा, वो ये थी कि धूप भी निकली हुई थी, चुभन भी थी धूप में, बट वो वाली उमस नहीं थी जो अभी कुछ दिन पहले तक लग रही थी। और सुबह और शाम थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है और अब शाम भी जल्दी हो जा रही है, यानी कि रातें लंबियां लंबियां रे, रातें लंबी होनी शुरू हो गई है। अब देखो, मैं जैसे आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ ना, मैं रियलिटी में ऐसी बातें नहीं करता हूँ। तो अभी वापस आते हैं मौसम विभाग पे। तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन आप लोगों को सूखे देखने को मिल सकते हैं, कल भी सूखा मिल सकता है, परसों चांसेस 50-50%। ऑल्दो मेरा फोन तो ये दिखा रहा है कि 80% चांसेस है फ्राइडे को बारिश आएगी, बट इस साल हम लोगों ने बारिश देखी ही कहाँ है। गिनती के 10-15 दिन बारिश हुई है, गिनती के, मैं गिन सकता हूँ अगर एक एक करके गिनने बैठूंगा ना, तो मुझे डेट्स पता है कब कब बारिश हुई है। बट वापस आते हैं कि परसों बारिश होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, बट अभी कल की कोई उम्मीद नहीं है बारिश की और आज रात की भी कोई उम्मीद नहीं है बारिश की। बट हाँ, अभी मौसम विभाग का यही कहना है कि धीरे धीरे मौसम में बदलाव आएगा और सब कुछ ठीक ठीक होता चला जाएगा। बस यही प्रे करेंगे हम लोग, और जो मौसम में एक वायरस घूम रहा है ना, तो इससे बच

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

और अब सिनेमा का कैप्सूल की एक ऐसी बात जिसको सुनकर बॉलीवुड फैंस कहेंगे ओहो ये कॉम्बिनेशन तो इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं हैवान की। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक तरफ अक्षय कुमार, दूसरी तरफ सैफ, और दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। मतलब नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। अक्षय और सैफ को साथ देखना अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग स्क्रीन पर्सनैलिटीज है। एक तरफ अक्षय की एनर्जी और दूसरी तरफ सैफ का बिल्कुल अलग एक्टिंग स्टाइल और ऊपर से प्रियदर्शन। तो उम्मीद तो यही है कि फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। फिल्म को लेकर अभी से बस बनना शुरू हो गया है और फैंस खास तौर पर इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतने सालों बाद ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर कैसा जादू करेगा। तो जब बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, तब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। अब हैवान कितनी बड़ी धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस फिल्म पर नजर रखनी तो पड़ेगी। बॉस मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल सिर्फ रेडियो महारानी पर।

क्या हाल है मेरे दोस्त। अब ऐसे दोस्त से पूछो क्या हाल है जो कि बहुत ज़्यादा कंजूस है, और मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं अपने दोस्त को बोलना चाह रहा हूँ कि क्या हाल है मेरे दोस्त। उसका रिप्लाई तो एक ही आना है कि बस भाई सब बढ़िया। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी के साथ है। एंड सेगमेंट का नाम है क्या हाल है, और अक्सर हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या हाल है। अब देखो, कंजूस इंसान से अगर आपका कोई ना कोई दोस्त होगा जो कंजूस होगा, उससे अगर आप पूछोगे क्या हाल है, बोलेगा भाई सब बढ़िया, बस तेरा बर्थडे आ रहा है ना इसलिए फ़ोन साइलेंट कर रहा हूँ। हाँ, फ़ोन साइलेंट किस लिए कर रहा है वो, क्योंकि उसे गिफ्ट देना पड़ जाएगा। एंड बोलता है भाई मिलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तू पिला देना मैं कंपनी दे दूँगा। कंजूस दोस्त का हाल कैसा होता है कि वॉलेट में पैसे हैं, बस बाहर आने की परमिशन नहीं है उसके पास। मतलब पैसे बाहर आने की परमिशन नहीं होती है। रेस्टोरेंट में मेन्यू देख के बोलता है भाई कुछ हल्का सा ले लेते हैं, मतलब उसका कहने का है कि बिल हल्का आना चाहिए। और इसके अलावा अगर उससे ट्रीट मांग ले तो बोलेगा भाई ट्रीट तो पक्की है, बस डेट टाइम और मतलब जगह डिसाइड नहीं हो पाती है ना। किसी भी कंजूस दोस्त से ट्रीट मांग के देख लो, यही होगा। उसके पास UPI भी है, उसके पास कार्ड भी है, कैश भी है, बस उसके पास पेमेंट करने का इमोशन नहीं है। उससे कभी पूछ लो क्या हाल है, वो बोलेगा कि इतना कंजूस, मतलब क्या बोलें उसको, कंजूस तो वो इतना है कि रेस्टोरेंट में पानी भी पहले कंफर्म करता है भाई फ्री है ना, अगर फ्री नहीं है तो आप रेगुलर वाटर लेकर आइए। इसके अलावा बिल आती है उसका, फ़ोन पे इम्पॉर्टेंट कॉल पता नहीं कैसे आ जाता है, और फिर या फिर अगर इम्पॉर्टेंट कॉल ना आए तो फिर वो वॉशरूम की डायरेक्शन में अपने आप कैसे चले जाता है। तो आपका भी कोई ना कोई दोस्त होगा जो कि कंजूस होगा, उससे भी पूछना क्या हाल है, क्या उसके भी हाल ऐसे ही हैं, तो बस उसको बोलना कि कभी तो खर्चा कर दिया कर मेरे दोस्त। चलिए, ऐसी और भी बातें होती रहेंगी, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना। मैं हूँ गौरव आपके साथ, आप सुन रहे हैं शो HR 89.6।

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सनम का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

क्या आपको पता है बहुत सारे बॉलीवुड के गाने हैं जो कि हॉलीवुड या फिर किसी और म्यूजिक इंडस्ट्री से कॉपी किए गए हैं, और आज मैं उन पे बात करूंगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। और आप लोगों ने एक फिल्म का गाना सुना होगा, डिस्को डांसर, कोई यहाँ नचे नचे, ये गाना तो सबने सुना है। एक्चुअली में ये फिल्म द बगल्स से लिया गया गाना है, वीडियो किल द रेडियो स्टार, ये गाना था और उसको क्या बना दिया, कोई यहाँ नचे नचे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे गाने हैं, हाँ यही प्यार है, ये भी गाना था फ्रॉम द मूवी फ्रैंकी वल्ली वैली, फ्रैंकी वैली वल्ली नहीं वैली। और इसके अलावा बाबी गर्ल तो आप लोगों ने गाना सुना होगा, तो तुमने जो ना कहा, ये लावारिस मूवी का गाना है। और इसके अलावा अभी रीसेंट की अगर बात करें तो ए दिल है मुश्किल, ये फिल्म तो सबने देखी होगी ना, इस फिल्म का एक गाना है राजन दे यार बुलेया, पापा रोज का ये गाना लास्ट रिजॉर्ट, उसको चेंज करके बुलेया बना दिया गया है। और आर पार एक फिल्म आई थी, उसमें बाबूजी धीरे चलना, बाबूजी धीरे चलना, याद है ना ये गाना, तो वो गाना भी परहैप्स परहैप्स परहैप्स से लिया गया है, डोरिस डे से। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो कि मैं अक्सर डीकोड करता रहता हूँ, तो ऐसे ही डीकोड के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम, क्योंकि गौरव आप सभी के लिए अक्सर म्यूजिक तो डीकोड करता ही रहेगा। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए इक्का बाद चौर डीनो जेम्स की आवाज़ में ये गाना,

क्या आसमान में मौसम में आपको भी त्योहारों की सुगंध आनी शुरू हुई है कि नहीं? मुझे तो आने लग गई है सुबह और शाम को, ये आसमान में मौसम में ये सुगंध मजा ही दे देती है। आप लोगों को भी आ जाएगी, जरा ध्यान देना। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो का गौरव कहते हैं प्यार से, और मैं जो बात कर रहा हूँ, त्योहारों की खुशबू आसमान में आ गई है और आसमान के साथ साथ मार्केट में भी आ गई है, क्योंकि मार्केट में भीड़ दिखनी शुरू हो चुकी है। लोगों ने अपने घरों पर पेंट करवाना शुरू कर दिया है, दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने पूरे साल भर घर में सफाई नहीं करी, उनको भी काम पे लगा दिया जा रहा है, क्योंकि दिवाली मात्र दो महीने बाद है। अब देखो सितंबर आधा निकल चुका है, और एग्जैक्ट बोलें तो 9 नवंबर को दिवाली, आज है 9 सितंबर, हाँ 2 महीने तो है। तो बस ऐसे ही टाइम बीतता चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब दिवाली आई और कब चलेगी। खैर, जो मैं बात कर रहा हूँ कि त्योहारों की खुशबू आसमान में है, तो त्यौहार नज़दीक है, मार्केट में भीड़ बढ़ी है। तो भीड़ के साथ साथ एक और चीज़ बढ़ी है, उसे कहते हैं सड़कों की भीड़, यानी कि सड़कों का ट्रैफिक। मेन रोड पे भी ट्रैफिक है, अंदर वाली रोड पे भी ट्रैफिक है, NIT1 में जाओ वहाँ ट्रैफिक है, ओल्ड की मार्केट में जाओ वहाँ ट्रैफिक है, सेक्टर 15 की मार्केट हो या फिर सेक्टर 10 की मार्केट हो, हर जगह आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा। और फिर इसके अलावा मथुरा रोड की अगर बात करें, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा वाला ट्रैफिक मिल जाता है। तो अब ये त्योहारों में ना समझ नहीं आता कि शॉपिंग करे तो करे कहाँ से, जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। तो आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर शॉपिंग करनी है त्योहारों की, अब भी कर लो, क्योंकि अभी उतनी भीड़ नहीं हुई जितनी आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजते रहेंगे।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो। स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

या कभी ऐसा हुआ है आप अपने आप को सपने में खेलते हुए देख रहे हो, मतलब क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, हो सकता है घर बैठे बैठे PS5 पर GTA 5 खेल रहे हो। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आरजे गौरव का कहना है कि अगर सपने में आप अपने आप को खेलते हुए देखते हो तो कामयाबी मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। यार जगह का कहना नहीं है, बेसिकली ये स्वप्न शास्त्र ड्रीम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं इसे, ड्रीम एस्ट्रोलॉजी। और इसमें देखो ये पॉसिबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट हाँ मैं तो चाहूँगा कि आपकी कामयाबी भी हो, आपकी तरक्की भी हो। और हो सकता है अगर आप सपने में अपने आप को खेलते हुए देख रहे हैं तो अचानक से आपको लाभ मिल सकता है। वो कहते ना अचानक से एकदम से गेंस आ जाती हैं लाइफ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें, पैसे बढ़ गए एकदम से आपकी, या फिर तरक्की मिल गई आपको, सम्मान मिलने लग गया आपको। और इसके अलावा अगर आप बॉल से खेल रहे हैं तो इसको तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोई नई जिम्मेदारी या फिर तरक्की आने वाली है आपकी लाइफ में। अब इसके लिए ना कुछ सपनों के साइकोलॉजी से भी रिलेटेड टर्म्स होती हैं। अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर आप अपने आप को खेलते हुए देख रहे हो तो मतलब अब आप स्ट्रेस से दूर हो, बहुत ज़्यादा सुकून है आपकी लाइफ में, और जल्दी ही आपकी लाइफ से स्ट्रेस से दूर होने वाला है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिफ्रेशमेंट देने के लिए ऐसे सपने दिखाता है, या फिर हो सकता है आपके अंदर का जो बचपना है, इनर चाइल्ड है जो आपका, वो भी जिंदा दिल है, अभी भी मतलब जागा हुआ है और ज़िंदगी को खुलकर आप जीना चाहते हैं, ये भी दिखा सकता है। तो आपको भी ऐसे सपने आते होंगे, तो ऐसे ही डेली डेली सपनों को डिकोड करते हैं हम लोग। अपने सपने जरूर लिखा कीजिए, हर रोज बोलता हूँ, पर अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर गानों को एंजॉय कीजिए।

0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

शाम इतनी ज्यादा हो गई है कि सारे गाने ही अच्छे लगते हैं। वैसे ये गाना तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था, है कि नहीं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम लव विद दिस सॉन्ग, आई एम इन लव सीरियसली। बट मैं एक और चीज के साथ प्यार में पड़ गया हूँ, और उसे कहते हैं रनिंग, रनिंग एंड रनिंग, जॉगिंग की बात कर रहा हूँ मैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा, या फिर आरजे गौरव कह सकते हो, रेडियो को गौरव कह सकते हो, कुछ भी कह लो। बट अभी इस टाइम मैं हूँ आपका जिम ब्रो। तो रोज इस टाइम आते हैं हम लोग, जिम के बारे में बात करते हैं, वर्कआउट के बारे में बात करते हैं, और आज मैं बात करना चाहता हूँ रनिंग के बारे में। एक्चुअली मैंने रनिंग करनी शुरू करी, पहले लाइक 1 किलोमीटर दौड़ना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बट अब जब मैंने दौड़ना रेगुलर शुरू किया तो 1 किलोमीटर तो लाइक कुछ पता ही नहीं चलता, 3 किलोमीटर तक तो मैं दौड़ लेता हूँ आराम से, फिर उसके बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है। कभी कभार पैर जवाब दे देते हैं तो कभी कभार मन जवाब दे देता है। बट हाँ, मैं 3 से 5 किलोमीटर की कोशिश करता हूँ कि मैं रनिंग कर लूँ हफ्ते में 3 से 4 दिन। बट इसी के साथ साथ मैं आप सभी को भी बोलना चाहूँगा, अगर आप रनिंग जर्नी अपनी शुरू करना चाहते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा कि पहले ही दिन आप 4 किलोमीटर दौड़ लो, 5 किलोमीटर दौड़ लो। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रनिंग करनी शुरू करनी है, आपने 100-200 मीटर आपने रनिंग करी, फिर उसके बाद आप पैदल वॉक कीजिए, फिर आपने 100-200 मीटर रनिंग करी, फिर पैदल वॉक कीजिए, ऐसे करते करते 1 किलोमीटर कंप्लीट कीजिए अगर आप बिगिनर हैं तो। और फिर इसके बाद आप धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाते जाइए, स्पीड बाद में बढ़ जाएगी, अभी सिर्फ आप रनिंग पर कंसंट्रेट कीजिए। और जब रनिंग आपकी रेगुलर हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए, तो फिर उसके बाद आप अपने आप को एक टारगेट दीजिएगा कि 7 मिनट के अंदर मैं 1 किलोमीटर तो रनिंग करके ही रहूँगा या फिर रहूँगी। बस इतना सा आपको फॉलो करना है और आप धीरे धीरे एक अच्छे रनर बन जाएंगे। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए और भी खूब सारे गाने और बातें होती रहेंगी मेरे दोस्त।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

आज शो के शुरुआत में ही मैंने एक बात बोली थी और वो ये थी कि आजकल सोशल मीडिया पे लोगों के लिए कितना आसान हो गया है ना, किसी को भी बुली करना, किसी को भी कुछ भी कह देना। उनको पता है कि कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। डोंट वरी आरजे गौरव है आप सभी के साथ। और अगर आपको भी कोई ऐसे हरास करता है ऑनलाइन, या फिर आपको कुछ भी फालतू बोलता है, बॉडी शेम करता है, या फिर ऑनलाइन बुलिंग करता है, तो उसको कैसे सबक सिखा सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था और मैं अभी फिर से बताऊंगा। अब देखो, जो भी इंसान मुझे सुन रहा है उन सबको बता देना चाहता हूँ, साइबर बुलिंग इज अ क्राइम, इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो आपके खिलाफ केस हो सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसको लोग अक्सर बड़ी ही लाइटली ले लेते हैं, और वो उसे कहते हैं आप लोग साइबर बुलिंग। और इसी के साथ साथ आप लोग उसके खिलाफ केस ज़रूर कीजिए। और कैसे कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पर जाइए, वहाँ पर अदर कंप्लेंट्स में जाइए, नंबर डालिए, OTP डालिए, क्राइम क्या किया है उसने वो डालिए, साइबर बुलिंग किया, साइबर बुलिंग पे क्लिक कर दीजिएगा, हो जाएगा। आपको बस थोड़े से क्या कहते हैं प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि स्क्रीनशॉट, लिंक आपको दिखाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत टाइप करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और आपको एक एक्नॉलेज नंबर मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर। उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो ये कंप्लेंट है उसका स्टेटस क्या है। बस ऐसे करके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ऐसी और भी टिप्स जानने के लिए रेडियो महारानी सुनते रहिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 9। तब तक के लिए मिलेंगे आप सभी से, अभी मैं जा रहा हूँ, मिलूंगा कल शाम को फिर से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए एक से बढ़कर एक गाने भी तो चलने हैं ना मेरे दोस्त। वापस आएगी गीत विदेश क्वाजिया। सो दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
1: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी। 89.6 रेडियो महारानी। कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ

रात थोड़ी सी गहरी हो गई है, शहर की आवाजें थोड़ी कम है और शायद इसी वक्त दिल की आवाज थोड़ी ज्यादा साफ सुनाई देती है। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके। और इसके सबसे खूबसूरत हिस्से इश्क शायराना में हम आज की रात मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसे शायर से जिनका नाम लेते ही मोहब्बत, उदासी, इंतजार और एक अजीब सी बेबाकी सब एक साथ याद आने लगते हैं। नाम है अहमद फराज। फराज साहब ने बहुत ही कम उम्र में पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने उर्दू और पर्शियन में हायर स्टडीज की और अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत रेडियो के तौर पर की। यानी आवाज और अल्फाज से उनका रिश्ता सिर्फ एक शायर का नहीं था, वो आवाजों की दुनिया को समझने वाले इंसान भी थे। लेकिन फराज सिर्फ लव पोइट नहीं थे, उनके अंदर एक रिबेलियस आदमी भी था। शायद यही वजह है कि उनकी पोइट्री में मोहब्बत भी सिर्फ फूलों और चांद की कहानी नहीं, उसमें विरोध है, दर्द है, दूरी है, सवाल है और सबसे बड़ी बात अपनी बात कहने की हिम्मत है। और यही चीज मुझे फराज के सबसे करीब लगती है, क्योंकि हम भी तो आजकल दो ही तरह की जिंदगी जीते हैं, एक जो इंस्टाग्राम पर दिखाई देती है और एक जो रात के इस वक्त अपने कमरे में अकेले बैठकर महसूस होती है। फराज उसी दूसरी जिंदगी के शायर हैं, वो उन फीलिंग्स के शायर हैं जिन्हें हम टाइप तो बहुत करते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते। तो आज की रात थोड़ा वक्त फराज के नाम करते हैं, उनकी मोहब्बत को समझेंगे, उनकी नाराजगी को महसूस करेंगे और शायद उनकी कुछ बातों को भी, और शायद उनकी कुछ बातों में अपनी ही कोई कहानी मिल जाए। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां। और अब इस रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाने का वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड।

0: land today. Peace tomorrow.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके मैं आपके साथ हूँ, आपकी इश्क वाली गीत शो है इश्क बाजियां, और ये है हमारा सेगमेंट इश्क शायराना। अभी हमने जाना फराज को, उस आदमी को जो सिर्फ मोहब्बत का शायर नहीं था बल्कि अपने समय में बेचैनी को भी अपनी पोएट्री में जगह देता था। लेकिन अब जरा उस फराज के पास चलते हैं जिसे दुनिया ने सबसे ज्यादा प्यार किया, द रोमांटिक फराज। और फराज की मोहब्बत की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनकी मोहब्बत बहुत परफेक्ट नहीं थी। उसमें आर्ग्यूमेंट्स है, इंतजार है, इनसिक्योरिटी है, दूरी है, ईगो है, और कभी कभी वो एक्सेप्टेंस भी है कि शायद सामने वाला अब आपके साथ नहीं है, यानी बिल्कुल हमारी तरह। आज हम रिलेशनशिप में होते हुए भी कितनी ही बार अकेले होते हैं। एक इंसान ऑनलाइन होता है लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल, मैसेज पढ़ लिया जाता है जवाब नहीं आता है, किसी का सीन पता होता है लेकिन लास्ट फीलिंग नहीं पता होती। और फराज शायद इसी सब ठीक है के पीछे वाली दरारों के पीछे के शायर है। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब जरा सोचिए।

रेडियो महारानी 89.6 FM सेगमेंट है इश्क शायराना और अब है दिल को थोड़ा और फराज में बनाने का वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का स्टे ट्यून क्योंकि कहानी अभी बाकी है।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely

एग्जैक्टली बिगड़ जाएगा। हम लोगों की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर कॉलिंग।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छटके। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, जहाँ आज रात इश्क शायराना में हम बात कर रहे हैं अहमद फराज की। अब तक हमने फराज को एक रोमांटिक पोइट की तरह देखा, लेकिन फराज की मोहब्बत सिर्फ आई मिस यू वाली मोहब्बत नहीं है, उनकी पोइट्री में एक बहुत मैच्योर रियलाइजेशन भी है कि कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं खोते, हम उसके साथ अपनी बनाई हुई पूरी दुनिया को खो देते हैं। क्योंकि ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल चीज ये नहीं होती कि वो इंसान चला गया, सबसे मुश्किल होता है उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे रिचुअल्स भी चले जाते हैं। वो गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस, वो बिना मतलब की कॉल्स, वो घर पहुंच कर बताना, वो किसी पर्टिकुलर जगह से गुजरते हुए अचानक उसका याद आ जाना, और फिर एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आप उस इंसान को नहीं, उस वर्जन ऑफ योर सेल्फ को मिस कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ करता था। फराज की एक और बहुत खूबसूरत लाइन है, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। बस यही तो है, किसी के चले जाने के बाद पता चलता है कि वो सिर्फ एक पर्सन नहीं था, वो आपका रूटीन था, आपकी उम्मीद था, आपकी छोटी छोटी खुशियों का विटनेस था, और शायद इसीलिए कुछ लोग जाते जाते भी नहीं जाते हैं। उनका नाम हमारी कन्वर्सेशन में नहीं आता, लेकिन हमारी खामोशी में रह जाता है। और आज के टाइम में जहां हम हर चीज को जल्दी रिप्लेस करने के आदी हो चुके हैं, नया फोन, नई जॉब, नई कैफे, नई रिलेशनशिप, वहां फराज हमें एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ याद दिलाते हैं, कुछ कनेक्शंस रिप्लेस नहीं होते, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। शायद क्लोजर का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ महसूस होना बंद हो जाए, क्लोजर शायद ये है कि एक दिन वही याद रह जाए और आपका दिल टूटे नहीं, बस थोड़ा सा आप मुस्कुरा दो। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत, और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। स्टे ट्यून्ड।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगी। और ऑनेस्टली ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है, मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी। मैं आपके साथ हूँ इश्कवाली गीत। आज की रात हमने अहमद फराज साहब को सिर्फ एक पोइट की तरह नहीं बल्कि एक फीलिंग की तरह समझने की कोशिश की, एक ऐसे पोइट की तरह जिसकी पोइट्री में लव भी है, रिबेलियन भी है और लोनलीनेस भी है, जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। फराज की पोइट्री की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, वो आपको सिर्फ किसी और की याद नहीं दिलाते, कभी कभी वो आपको अपने खुद की याद दिलाते हैं, उस इंसान की जो कभी किसी के लिए बहुत खास हुआ करता था, उस रात की जब आपको लगा था कि ये रिश्ता हमेशा चलेगा, उस गुड बाय की जिसे आपने सामने वाले से नहीं शायद खुद से कहा। फराज के यहाँ एक और खूबसूरत बात बार बार आती है, डिस्टेंस, आँख से दूर होना और दिल से उतर जाना दोनों एक बात नहीं है, और हमारे लिए इससे बड़ा रिलेशनशिप लेसन कुछ नहीं है। किसी को रोज देखना लव नहीं है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई आना लव नहीं है, हर फोटोग्राफ में साथ होना प्यार नहीं है। कभी कभी कोई इंसान हजारों माइल्स दूर होकर भी आपके सबसे करीब होता है, और कभी कभी कोई आपके सामने बैठा होता है लेकिन आप दोनों के बीच इतनी खामोशी होती है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया बीच में आ गई हो। वही फराज का मैजिक है, वो लव को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, वो उसकी कीमत भी जानते हैं, और शायद इसीलिए उनकी पोइट्री आज भी इतनी पर्सनल लगती है, क्योंकि हर किसी के पास एक फराज वाला रिश्ता है, कोई जिसे हमने चाहा, कोई जिसे हमने खोया, कोई जिसे हम आज भी याद करते हैं, या शायद कोई जिसे हम भूल जाने का नाटक करते हैं। तो अगर आज की रात फराज की किसी लाइन ने आपको किसी की याद दिलाई तो उसे तुरंत मैसेज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी को याद करना भी अपने आप में एक पूरा खत होता है जिसे भेजना जरूरी नहीं है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, ये है रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां। तो आज की रात हमने की फराज साहब के नाम। अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि रेट्रो इश्क अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क, एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट।

0: मुलाकातें यादों में बदलने लगी और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहाँ चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहां है। मैं हूं इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है। और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, जहां मैं बात करती हूं उन कहानियों की जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहां मैं बात कर रही हूं प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहाँ शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह होना तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुँच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

और अब सिनेमा का कैप्सूल की एक ऐसी बात जिसको सुनकर बॉलीवुड फैंस कहेंगे ओहो ये कॉम्बिनेशन तो इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं हैवान की। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक तरफ अक्षय कुमार, दूसरी तरफ सैफ, और दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। मतलब नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। अक्षय और सैफ को साथ देखना अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग स्क्रीन पर्सनैलिटीज है। एक तरफ अक्षय की एनर्जी और दूसरी तरफ सैफ का बिल्कुल अलग एक्टिंग स्टाइल और ऊपर से प्रियदर्शन। तो उम्मीद तो यही है कि फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। फिल्म को लेकर अभी से बज़ बनना शुरू हो गया है और फैंस खास तौर पर इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतने सालों बाद ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर कैसा जादू करेगा। तो जब बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, तब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब हैवान कितनी बड़ी धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस फिल्म पर नजर रखनी तो पड़ेगी। बॉस, मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल सिर्फ रेडियो महारानी पर।

बाजियां। प्यार बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलेसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

तो भाई बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वहीं अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है।

है अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th ऑफ सितंबर जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्कबाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलसे भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है,

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है, और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।